मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो रहे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 5:55 हो रहे हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत। वार्ता विषय है धान के बीजों का चयन।
1: धान हमारे देश की एवं हमारे राज्य की महत्वपूर्ण फसल है और इसकी महत्ता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक वर्षों में इसको अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया है। इसका उत्पादन की स्थिति वाली मृदाधनों का समुचित उपयोग वो कर सकते हैं। साधारणतः विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले अधिक, हम सभी जानते हैं कि धान हमारे देश की एवं हमारे राज्य की महत्वपूर्ण फसल है और इसकी महत्ता को देखते हुए करें, इस तकनीक में संकर धान का प्रदर्शन बेहतर पाया गया है, इसलिए इसकी सिफारिश की जाती है, क्योंकि संकर धान में अधिक कल्ले निकलते हैं और अधिक उत्पादन देने की क्षमता होती है और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग वो कर सकते हैं। साधारणतः विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को SRI द्वारा उगा सकते हैं। अच्छी फसल के लिए स्थानीय एवं लोकप्रिय किस्म को भी उगाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हों। बीज दर का अगर हम बीज की बात करते हैं तो 1 एकड़ धान के क्षेत्रफल के लिए 2 किलो बीज, अच्छा स्वस्थ बीज का उपयोग करना है। निम्नलिखित पद्धतियाँ अपनाकर स्वस्थ एवं समुचित बीजों का चयन करें। फर्स्ट जो प्रथम करते हैं, बीज को पानी में डुबो करके डुबोने के लिए लगभग 1.65 किलो नमक को 10 लीटर पानी में मिलाकर नमक का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ताजे अंडों को नमक के मिश्रण में डालने से अगर अंडा तैर रहा हो तो नमक के मिश्रण की सांद्रता बीज डुबाने के लिए ठीक है। यदि अंडा नीचे रह गया तो नमक डालकर मिश्रण की सांद्रता नमक डालकर बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारा अंडा तैरता रहे। पौधशाला के लिए चयन किए गए बीजों को नमक के मिश्रण में डालना चाहिए। बीजों को घोल में अच्छी तरह मिलाएं और ऊपर तैरने वाले बीजों को अलग निकाल कर रख देना चाहिए, क्योंकि इन बीजों की क्षमता, अंकुरण क्षमता और जीव जो वाइबिलिटी है वो कम होती है, इसलिए इनको ऊपर से उतार कर अलग रख देते हैं। नीचे बचे हुए बीजों का चयन करना चाहिए और उन्हें अच्छी प्रकार साफ पानी में 2-3 बार धो लेना चाहिए ताकि नमक का हिस्सा उस बीज में न रहे। अब बीज भिगोना, कैसे हम बीज को भिगोएं? अच्छे साफ सुथरे बीजों को 12 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद पानी से निकालकर भीगी ही बोरी में डालकर 24 घंटे तक किसी छायादार स्थान में अंकुरण के लिए रख देना चाहिए। अंकुरित बीजों का छिड़काव, पौधशाला की जो क्यारियां हमको बनानी हैं उस क्यारी में 2 किलोग्राम अंकुरित बीज के छिड़काव करने से पहले 4 भागों में बाँट लें और 1 भागों को छिड़काव करना चाहिए। बीज का छिड़काव शाम में करना चाहिए ताकि बीज सूख न जाए। बीज की बुआई पश्चात अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद की हल्की परत उसके ऊपर डाल देनी चाहिए। इसके ऊपर धान का पुआल क्यारी के ऊपरी पहली परत में बिछाएं ताकि बीजों को सीधी धूप और चिड़ियाओं से सुरक्षित रख सकें। प्रतिदिन सुबह शाम कैन की सहायता या छिड़काव जो स्प्रेयर होता है उसकी सहायता से पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। मुख्य खेत की तैयारी जहाँ पर हमको पौधा रोपना है उस खेत की तैयारी हम कैसे करें? इस पद्धति में परंपरागत पद्धति के समान ही मुख्य खेत की तैयारी की जाती है, लेकिन खेत को समतल रखना अति आवश्यक है। खेत तैयारी से पहले खेतों में लगभग 4 टन गोबर की सड़ी गली खाद या कंपोस्ट खाद 1 एकड़ में डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। खेत की जुताई 2 बार करके उसमें पाटा चला दें ताकि खेत समतल हो जाएँ, खरपतवार मिट्टी में मिल जाएँ। खेत तैयार करते समय अच्छी जल प्रबंध के लिए सिंचाई एवं जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर अधिक बारिश हो गई तो उस बारिश के पानी का जल निकास भी उचित प्रबंध होना चाहिए। मुख्य खेत में मार्किंग करते हैं। इस विधि में पौधों की दूरी एवं कतार से कतार की दूरी समान होती है और प्रति वर्ग मीटर 16 पौधे ही लगाए जाते हैं। मार्कर की सहायता से रोपाई के लिए हम 25x25 की दूरी पर निशान लगा दिया जाता है। प्रति पौधा प्रतिरोपण, पौध प्रतिरोपण के लिए खड़े पानी की आवश्यकता नहीं होती। खेत की तैयारी के 24 घंटों के भीतर रोपण करना चाहिए। इस पद्धति में 8 से 12 दिन का पौधा रोपा दिया जाता है। जब पौधों में 2 या 3 पत्ते निकल जाते हैं, 2 या 3 पत्ते, इस विधि में पौधों को बीज के साथ रोपण आवश्यक है। खेत में डाले गए निशान की प्रत्येक चौकड़ी पर 1 पौधे को कम गहराई पर रोपा जाता है। पौधों को पौधशाला से निकालने के लिए 1/2 घंटे के भीतर रोपनी कर देनी चाहिए।
0: अभी आप खेत खलिहान कार्यक्रम में सुन रहे थे वार्ता धान के बीजों का चयन। वार्ता करते डॉक्टर गुरु शरण पवार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः 6 बजने ही वाले हैं। हिंदी समाचार बुलेटिन के लिए अब आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अजनबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और

0: वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन। आज चिंतन मनन में चिंतन विश्वास की शक्ति पर। वाचन स्वर अमित कुमार का है।
2: महात्मा गांधी विश्व के उन महानतम लोगों में से एक हैं जिनका पूरा जीवन सत्य और अहिंसा के आधार स्तंभों पर टिका हुआ है। गांधी जी ये मानते हैं कि सत्य और अहिंसा तथा असत्य और हिंसा इनके बीच मध्यम मार्ग नहीं हो सकता। हम भले ही कभी इतने मजबूत ना हो कि मन वचन और कर्म में पूरी तरह अहिंसा का पालन करें, लेकिन अहिंसा को हमें अपना लक्ष्य बनाकर रखना चाहिए तथा उसकी ओर लगातार बढ़ना चाहिए। स्वतंत्रता की उपलब्धि भले ही वो मनुष्य के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो अथवा संसार के लिए, ठीक उसी अनुपात में होनी चाहिए जिस अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अहिंसा की उपलब्धि हो। इसलिए जिनका विश्वास हो कि वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र

0: चल रहे हैं तो अंत में विजय आपकी ही होगी, ना कि असत्य की। भले ही ये बातें गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय कही थी, लेकिन ये आज भी उतने ही प्रासंगिक है। विश्वास मानव सभ्यता की वो पूंजी रही है जिसके सहारे अतीत से लेकर आज तक मानव इस मुकाम पर पहुंच पाया है। लेकिन समस्या तब आती है जब ये विश्वास गलत दिशा में मुड़ जाता है। उस समय ये निर्णय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि सही दिशा में धीमी प्रगति और गलत दिशा में तेज प्रगति में से क्या चुनाव करना चाहिए। ठीक उसी समय हम इस प्रश्न की कि हमने चुनाव क्यों किया की अवहेलना कर जाते हैं। समस्या की मूल जड़ इसी में है। अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को तरजीह देकर हम इसे समाज की जरूरत बताते हैं, और तो और जो सही रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हम यहां गांधी जी की ये बात भूल जाते हैं कि थोड़ों का सत्य अपना महत्व रखेगा ही, करोड़ों का असत्य वैसे ही उड़ जाएगा जैसे हवा के आगे तिनका। इसलिए हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी शक्ति है जिसके सहारे हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने को सदैव तत्पर रह पाएंगे। आइए चिंतन करें।
1: अभी आपने सुना चिंतन मनन के अंतर्गत अमित कुमार से चिंतन, विषय था विश्वास की शक्ति। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हो रहे हैं। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में माँ भारती की वंदना, समूह स्वर में ये देश वंदना।

अरुण, ये मधुमय देश हमारा। इस देश गान के बाद अब आइए सुनते हैं चंद्रो आत्मा से ये भजन।

0: इस भजन के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होने को है। आज आपने चंद्रू आत्मा की आवाज़ में कुछ भजन सुने। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हो रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है योग से रोगों का समाधान।
1: वर्तमान परिपेक्ष में शरीर में विजाती द्रव्य विकार के रूप में रुक जाने का नाम ही रोग है। आज जितने भी रोगों का नाम है या कल होंगे, उन सब का कारण शरीर में विकार का रुक जाना ही है। योग मानव समाज को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में पूरी तरह सक्षम है। योगासन करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है। योग जीने की कला है और यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। योग आंतरिक शरीर पर भी प्रभाव डालता है। योग करने से हृदय, फेफड़ा, पाचन संस्थान, ग्रंथियों, मस्तिष्क, नाड़ियों, आँख, नाक, कान, यकृत जैसे सभी अंगों को स्वस्थ एवं सक्रिय रखता है। शरीर के अंदर की शक्ति को जगाने का कार्य भी योगासन से होता है। हमारे शरीर में योगासन व प्राणायाम से हमारी रक्त नलिकाएं शुद्ध हो जाती है। फेफड़े के करोड़ों छिद्र खुल जाते हैं। मांसपेशियों में लचक आ जाती है, जिससे उनके फैलने और सिकुड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। फेफड़ा को अधिक ऑक्सीजन ले पाने की क्षमता बढ़ जाती है और वे शरीर के विकार को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर कर पाते हैं। मनुष्य फेफड़ा में 16 से 18 करोड़ छिद्र है, जिसमें रक्त आकर भरता है। उसकी शुद्धि ऑक्सीजन से होती है। जितना अधिक रक्त शुद्ध होगा, विकार मुक्त होगा और तेजी से हृदय को उसे सारे शरीर में पहुंचाने में सुविधा होगी। यह योगासन करने से ही संभव होता है। प्रतिदिन योगासन करने से शरीर के विकार मुक्ति के चारों मार्ग नासिका, त्वचा, लिंग एवं गुदा सक्रिय रहते हैं। विकार शरीर में रुकता नहीं है और हम स्वस्थ रहते हैं। योगासन करने से मानसिक शक्ति भी बढ़ती है और इंद्रियों को वश में करने की शक्ति आती है। हमारे शरीर में 206 हड्डियों के जोड़ या सभी अंगों से योग होता है। 1 घंटा प्रतिदिन हम लोग योग करें तो आदमी कभी रोगी या बीमार नहीं पड़ते हैं। कोई रोग है तो योग आहार विहार को ठीक कर भगा सकते हैं। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में धीरज, संयम और विश्वास चाहिए। योग के साथ हमारा सही स्वास्थ्यप्रद भोजन भी औषधि है। खाने के लिए हम नहीं जिए, बल्कि जीने के लिए खाएं। योग के साथ शाकाहारी भोजन के साथ चोकर सहित मोटा आटा, साबुत दाल, गीली हरी सब्जी, दूध और फल भी हो। तीता, मीठा, मसाला, नमक कम से कम लें। प्रतिदिन 10 से 15 तरह का योग करें। सफाई हेतु प्रतिदिन नींबू, शहद, 2-4 ग्लास पानी सुबह भूखे पेट पीकर सोच जाएं। संपूर्ण शरीर की सफाई जल नेति क्रिया, कुंजल क्रिया एवं लघु शंख प्रक्षालन या एनीमा से करें। शरीर शुद्ध विकार मुक्त एवं निर्मल हो जाएगा। रोग कोषों दूर भागेगा। मन प्रसन्नचित एवं शांत रहेगा। तनाव नहीं रहेगा। कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। कभी दवाई खाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ शुद्ध पर्यावरण एवं स्वच्छता रोग भगाने में भी सहायक होता है। इस तरह हम योग की विधि अपनाकर अपने परिवार, समाज और देश को भी स्वस्थ रख सकते हैं। योग के आसन एवं प्राणायाम जैसे पवन मुक्त आसन, पश्चिमोत्तान आसन, शशांक आसन, सिंह गर्जन आसन, सूर्य नमस्कार, सर्वांग आसन, शवासन, भुजंग आसन, योगिंग जोगिंग, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम जैसे योग प्रतिदिन करने से लाभ है। खाना समय पर खाएं, अधिक नहीं खाएं, पेट का आधा भोजन से भरें, 1/4 भाग पानी एवं 1/4 भाग श्वास लेने के लिए छोड़ें। चाय कम से कम पिएं, परिवार और समाज के साथ सामंजस्य बनाकर रखें, तनाव नहीं रहेगा, शांति रहेगा। हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक एवं मोटापा जैसे असाध्य रोग दूर भागेंगे। स्वस्थ जीवन जीने के लिए इन बातों को अपनाकर हम 100 वर्ष तक अच्छे से जी सकते हैं।
0: अभी आपने स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरेश कुमार से वार्ता सुनी। योग से स्वास्थ्य लाभ, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:40 हो रहे हैं। निवेदित है श्री रामचरितमानस गान, मुख्य गायन स्वर ए हरिहरण और मिताली सिंह का है, संगीत सतीश भाटिया का।
2: नंबर 256।

लक्ष्मण को श्री राम की खोज में गया देख रावण यति का वेश धारण कर सूनी कुटी के समीप पहुंचता है। सीता जी को अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं सुनाकर वो उनके मन में भय अथवा प्रेम जगाने के प्रयत्न करता है। एक यति के मुंह से दुष्टतापूर्ण गुहार सुनकर सीता के मन में संशय उत्पन्न होता है कि तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। उसका नाम सुन और रूप देखकर सीता भयभीत होती हैं, किंतु धैर्यपूर्वक उसको श्री राम के पराक्रम की धमकी देती हैं। क्रुद्ध रावण बलात् उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चलता है। सीता का विलाप सुन मार्ग के सभी जड़चेतन प्राणी व्यथित होते हैं। गिद्धराज जटायु सीता जी को पहचानकर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर ला पटकते हैं और चूंच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं।

अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस गान, मुख्य गायन स्वर ए हरिहरन और मिताली सिंह का था। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, इसके अंतर्गत आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले शीर्ष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा और उसके प्रसारण समयों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आज रसरंग में कलाकार होंगे सीमा बनर्जी और गांधी कथा में आज आप सुनेंगे वार्ता गांधी।

0: और वैश्वीकरण विषय पर वार्ताकार होंगे डॉक्टर विजय कुमार। इसके अलावा रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं, मौसम की सूचनाएं, अखबारों की सुर्खियां और आज का इतिहास भी होगा और फिल्मी नगमों की सौगातों के साथ साथ हमारी बातचीत भी होगी। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में सात बजे से सात बजकर पचपन मिनट के बीच, प्रातः 9:06 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम नगमे नए पुराने के तहत कुछ फिल्मी गाने। 9:30 पर आज आप सुगम संगीत कार्यक्रम में अनुपमा कुमारी को सुनेंगे। दिन के 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आज आप अरविंद कुमार यादव को सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम में। 11 बजे फिल्म नई फिल्मों से कार्यक्रम होगा। 11:30 पर फिल्मी नगमों का एक और कार्यक्रम होगा गुलदस्ता। दोपहर 12 बजे हमारी शहरी महिला श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम आप सुनेंगे नारी लोक। 12:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT उमंग। दोपहर बाद 1 बजे लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग में आज आप शिव शंकर कुशवाहा और साथियों को सुनेंगे। आप 2:30 पर फिल्मी नगमों का कार्यक्रम चित्रपट से सुनेंगे। 3 बजे हमारी इस सभा का आज समापन होगा। संध्या 5 बजे हम पुनः अपने कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत होगी युववाणी कार्यक्रम से संध्या 5 बजे। 5:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा। संध्या 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी प्रसारित किया जाता है। 7:10 पर आज आप सुनेंगे हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता योग से रोगों का उपचार। वार्ताकार होंगे योगाचार्य उमाकांत चौधरी। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहे में आज आप सुनेंगे वैशाखी प्रसाद को। रात्रि 8 बजे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर आज आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शतदल। रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अल्ताफ हुसैन का ख्याल गायन होगा राग हेम में। और 10:30 पर आप श्रोता मित्रों के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा पसंद आपकी। अभी आप कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले शीर्ष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा और उसके प्रसारण समयों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे।
1: संगीत में प्रस्तुति आज आपने सुना बालकांड भाग 91।

0: लघुद्यमाः सन्ति इति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिंदी भाषायां एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रं इति संबोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति। मैक्रोनः हिंद्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञ भावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मन्त्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,248,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,780,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,77,140,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास संधिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, और आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं, आपका दोस्त रविंद्र। श्रोता मित्रों, आज 19 जून है। यूँ तो गुड मॉर्निंग विक्रमशिला का कारवां आपके लिए प्रत्येक दिन कुछ विशेष लेकर आता है, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम ही है सूचना, मनोरंजन और ज्ञान पर आधारित। ये सम्मिश्रण है हमारे कार्यक्रम का। हम प्रयास करते हैं कि आपको विश्व और देश में हो रहे जितने भी घटनाएं हैं, उनसे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनसे आपको रूबर कराएं, अवगत कराएं। इसके अलावा इतिहास में जो कुछ विशेष है, उससे भी आपको रूबरू कराएं। और मनोरंजन के लिए फिल्मी नगमों की सौगातें होती हैं। इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में सुगम संगीत भी रसरंग के रूप में प्रसारित होता है इस कार्यक्रम में। और

ज्ञान के लिए किसी विशेष विषय पर हम प्रत्येक दिन कुछ न कुछ वार्ता और अन्य चीज़ें लेकर आते हैं। अन्य अन्य दिनों के लिए अलग अलग सेगमेंट होते हैं। आज इस कार्यक्रम में गांधी कथा में आप सुनेंगे गांधी और वैश्वीकरण विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विजय कुमार। इसके अलावा रसरंग में कलाकार हैं आज सीमा बनर्जी। और रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं होंगी, मौसम की सूचनाएं होंगी, अखबारों की सुर्खियां होंगी और आज का इतिहास होगा। आज के इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे हम, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ एक खबर, आज की तिथि को जो मनाई जाती है उस पर हम बातचीत करेंगे। यह है राष्ट्रीय पठन दिवस पर। राष्ट्रीय पठन दिवस है क्या, ये सवाल है। राष्ट्रीय पठन दिवस क्या है? भारत में हर साल 19 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय पठन दिवस, नेशनल रीडिंग डे। यह दिन केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाईल नारायण पण्णिकर यानी पीएन पण्णिकर की तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनकी पुण्यतिथि पर यह दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। और उन्होंने 1926 में अपने गृह नगर में पुस्तकालय की शुरुआत की थी, जिसका नाम था सनातन धर्मम पुस्तकालय। और प्रथम पठन दिवस 1996 में मनाया गया। 1995 में 19 जून को पीएन पण्णिकर का निधन हो गया था। उनकी याद में केरल सरकार ने पीएन पण्णिकर फाउंडेशन के सहयोग से पहली बार 19 जून 1996 को इसे वायान दिनम यानी पठन दिवस के रूप में मनाया। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, देश स्तर पर इस दिवस को मनाने की ये जो शुरुआत हुई वह 2017 से हुई। केरल के इस सफल दिवस आयोजन को देखते हुए और पण्णिकर साहब के योगदान को देखते हुए 19 जून को देश में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पठन दिवस मनाने की घोषणा की गई 2017 में। और 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक पूरा महीना देश भर में राष्ट्रीय पठन माह के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस के उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो साक्षरता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। लोगों के बीच पुस्तकों के महत्व को उजागर करना और पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना। श्रोता मित्रों, पढ़ाई यानी अध्ययन और ज्ञान ये एक दूसरे के बहुत, हम कह सकते हैं, एक दूसरे के पहलू हैं। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञान होता है। कई बार हम सफलता से इसकी तुलना करते हैं। ये माना जा सकता है कि कोई सफल व्यक्ति ज्ञानी होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई असफल व्यक्ति अज्ञानी ही होगा। कोई कारण बस कहीं कमी रहने के कारण वो असफल हो सकता है, लेकिन ये कतई नहीं कि उनमें ज्ञान ना हो। और ज्ञान यानी अध्ययन से प्राप्त जो पूंजी है ये पूरे जीवन भर काम आता है, न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि हमारे परिवार, समाज के लिए, देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए और पूरी सृष्टि के लिए। क्योंकि ज्ञान अंधकार को मिटाता है, अज्ञान के अंधकार का विनाश करता है और शांति और संपन्नता का मार्ग प्रशस्त करता है। और ज्ञान होगा कैसे? ये अध्ययन से होगा। इसी कारण इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों में साक्षरता के प्रति जागरूकता हो, इसके लिए इस दिवस को पूरे देश में मनाया जाता है 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस। लोगों के बीच पुस्तकों का महत्व बहुत उजागर हो, बड़े पैमाने पर लोग पुस्तकों की तरफ आकृष्ट हों, इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है कि पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा सके। किताबें ऐसी चीज़ जो हम बहुत सारी क्रियाकलाप करके जीवन में स्वयं हासिल कर पाएँ, इससे बेहतर है कि पुस्तकों से जो उन्होंने पूरे जीवन भर अपने अनुभव जमा किए, अपने अनुभव को प्राप्त किया।

उन्होंने किताबों में उसे लिख दिया। जैसे कि विज्ञान की किताब को हम देखते हैं, विज्ञान की किताबों में अनेक अनेक वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किए, उन्होंने अपने आविष्कार

0: आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किताब हमें एकाग्रता देता है, विनम्रता देता है, शांति देता है, सलीका सिखाता है और व्यवहार कुशल बनाता है। इसलिए किताब पढ़ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। डिजिटल और भौतिक पठन का आज युग है। डिजिटल युग में किताबों की आदत जिनको है वो तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर किताबें उपलब्ध नहीं हो पा रही तो आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप पढ़ सकते हैं और दुनिया की कोई भी जानकारी पलक झपकते इन यंत्रों पर आप पा सकते हैं। तो राष्ट्रीय पठन दिवस मनाने का उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में लोगों में पढ़ने की इच्छा शक्ति को जागृत करने को प्रोत्साहित करना है और इसका श्रेय जाता है पीएन पंडनीकर को। आज 19 जून के दिन उनके पुण्यतिथि के पर पूरे भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय पठन दिवस। उनके पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। राष्ट्रीय पठन दिवस के बारे में बातचीत करने के बाद अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार रसरंग में आप सुनेंगे सीमा बनर्जी को।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: समय हुआ है 7:09:30। अब टटोलते हैं रेल आवागमन संबंधित सूचनाओं की जो प्रति हमारे पास प्राप्त हुआ है उसमें रेल आवागमन से संबंधित सूचनाएं हमें भेजी गई हैं और ये सूचना प्राप्त हुई है रेलवे स्टेशन भागलपुर के पूछताछ कक्ष से। इसमें कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के बारे में सूचना इस प्रकार है। गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से चलकर जयनगर जाती है। भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस अपने नियत समय से 7:50 से भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई। गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस 7:45 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार से चलकर भागलपुर आती है। विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने सही समय से 8:15 प्रातः वेला में भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की सूचना है। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, इसका सही समय भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुँचने का 8:05 प्रातः वेला में, लेकिन आज ही रेलगाड़ी 1 घंटे विलम्ब से भागलपुर रेलवे स्टेशन आएगी। गाड़ी संख्या 15416 जमालपुर से चलकर साहिबगंज जाती है पैसेंजर, 8:37 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई। गाड़ी संख्या 12335 भागलपुर से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई जाती है रेलगाड़ी। सप्ताह में 2 दिन चलती है, मंगलवार और शुक्रवार। आज शुक्रवार है, ये रेलगाड़ी 8:55 पर अपने सही समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13403 रांची से चलकर भागलपुर आती वनांचल एक्सप्रेस प्रातः 9 बजे अपने सही समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की सूचना है इसकी। गाड़ी संख्या 63431 साहिबगंज से चलकर जमालपुर जाती है MEMU, 9:15 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी, 9:35 पर क्यूल के लिए रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, 10:15 पर राजेंद्र नगर के लिए रवाना होगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस 11:55 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। अभी आप रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे। ये सूचना हमें भागलपुर रेलवे स्टेशन के पूछताछ कक्ष से प्राप्त हुई थी। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब आइए रसरंग में सुनते हैं सीमा बनर्जी से कबीरदास की ये भक्ति रचना।

अभी आप रसरंग में सीमा बनर्जी को सुन रहे हैं। कबीरदास की इस भक्ति रचना को सुनने के बाद अब आइए सुनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये गीत रचना। कलाकार हैं सीमा बनर्जी।

0: अभी आप रसरंग में सीमा बनर्जी को सुन रहे थे। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। वक्त एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार गांधी कथा में सुनेंगे विजय कुमार से वार्ता।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अब आइए गांधी कथा में सुनते हैं वार्ता। गांधी और वैश्वीकरण। वार्ताकार हैं डॉक्टर विजय कुमार।
3: श्रोताओं नमस्कार, गांधी कथा में आप सभी का स्वागत है। वैश्वीकरण के इस दौर में जब एक सार्वभौमिक सिद्धांत की जरूरत है, तब सारा विश्व महात्मा गांधी की ओर देखता है। आइए सुनते हैं एक वार्ता, गांधी और वैश्वीकरण। वार्ताकार हैं डॉक्टर विजय कुमार।
4: आधुनिक युग एक अत्यंत ही गतिशील युग है। दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से इतने अधिक निकट आ गए हैं कि वर्तमान समाज वैश्विक समाज कहा जाता है। जहां एक तरफ राज्यों की सीमाओं की दूरियां समाप्त हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ संचार और यातायात के साधनों ने दुनिया को एकीकृत कर दिया है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विनिमय राज्यों के बीच इतना व्यापक है कि समरूप संस्कृति विकसित हो रही है, भिन्नताएं मिट रही हैं। इंटरनेट ने भाषाओं की दूरी, बाजार सभ्यता ने उपभोक्ता और खान पान की विविधता, वैश्विक संस्कृति ने रहन सहन, वेशभूषा की दूरी मिटा दी है। विकास और वैश्वीकरण के इस युग की शुरुआत 20 जनवरी 1949 के उस दिन से मानी जाती है जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि पुराने साम्राज्यवाद, विदेशी मुनाफे के लिए शोषण के लिए उनकी योजना में कोई स्थान नहीं है। हम अपने वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति की उपलब्धियों द्वारा अविकसित क्षेत्रों के विकास को संभव बनाएंगे। इस वक्तव्य द्वारा उन्होंने जहाँ नवोदित राष्ट्रों को अविकसित क्षेत्र घोषित कर दिया, वहीं उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से उनके विकसित होने की संभावनाओं के द्वार भी खोल दिए। गांधी ने जब हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, उस समय उन्होंने पश्चिमी समाज की यांत्रिक औद्योगिक सभ्यता की आलोचना की थी। आधुनिकता के प्रतीकों के रूप में बड़े बड़े यंत्र, रेल, मोटर गाड़ियां, चिकित्सा के आधुनिक उपकरण, उनकी संसदीय लोकतंत्र की शासन व्यवस्था और उसके विस्तार में लगे डॉक्टर, वकील, प्रशासक आदि सभी उनकी आलोचना के बिंदु थे। पश्चिमी सभ्यता की कटु आलोचना के कारण उन्हें पुरातनपंथी, विकास विरोधी एवं पिछड़ा कहा गया। गांधी ने ऐसे आलोचकों

मध्य वर्ग और गरीबों को गुलाम बनाए रखने के अंग्रेजी प्रयासों का सहयोगी बताया था और कहा था कि ऐसे लोग अंग्रेजों को भगाकर उनकी जगह उनके जैसे ही राज करने वाले देशी शासक चाहते हैं। उन्होंने कहा था, हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए पर अंग्रेज शासक नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं लेकिन बाघ नहीं चाहते। हिंद स्वराज में भारत की गुलामी के कारणों को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुनिया का कोई भी देश तभी किसी और देश द्वारा पराजित और पराधीन किया जा सकता है जब वह देश अपनी विरासत और परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों से विचलित होकर किसी दूसरी संस्कृति के विधि विधान और भौतिक ढांचे के प्रति आकर्षित हो। इसलिए उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजी और पश्चिमी सभ्यता के प्रति देश के व्यापक हिस्से में व्याप्त आकर्षण को दूर करने पर सर्वाधिक जोर दिया, जिसमें असहयोग और स्वदेशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन दुर्भाग्य यह कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नव साम्राज्यवाद की चाल को दुनिया के नवोदित राष्ट्र, जिसमें भारत भी एक था, समझ न सके। जिन्होंने हमें दर्द और गुलामी दी थी उन्हीं से हम दवा और इलाज खोज रहे थे। आज जब पश्चिमी देशों की अपसंस्कृति को हमने अपनी संस्कृति बना लिया है और हमारी स्थिति पूर्व की साम्राज्यवादी स्थिति से भी बदतर हो गई है, तो उन्हीं देशों के लोगों से हमें गांधी के पाठ पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। आज पूरी दुनिया के समाज सेवी और चिंतक जो संसार को बेहतर बनाने के संघर्ष में जुड़े हुए हैं, वह सभी गांधी के आश्रय में जाते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे पश्चिमी औद्योगिक और वैज्ञानिक सभ्यता की सीमाएं उजागर होती जा रही हैं, विचारवान लोग गांधी के पास अपने प्रश्न लेकर आते जा रहे हैं। दुनिया में हर तरफ बढ़ती हिंसा, प्राकृतिक साधनों के अंधाधुंध शोषण, अधिक मशीनी उत्पादन के कारण बढ़ती बेरोजगारी, विज्ञापन मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा बाजार की बढ़ती मांग, वैज्ञानिकों द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग किए जाने के कारण बढ़ती और अनजान बीमारियां, सतत युद्ध के बढ़ते भय की चिंता ने हिंद स्वराज के सतत विकास की तरफ सबकी नजरें टिका दी हैं। वास्तव में वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया मुट्ठी भर पूंजीपतियों के निरंतर विकास और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक चाल है। वैश्वीकरण के लिए पूंजी देवता है, मुनाफा उसका मोक्ष। इसके लिए पूरी दुनिया एक बाजार है और दुनिया की सारी प्राकृतिक संपदाएं, मानवीय बुद्धि, मनुष्य और मनुष्यत्तर प्राणी महज एक बिकाऊ माल। इसके आयाम बड़े व्यापक हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक। इसकी ऑक्टोपस पकड़ से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैश्वीकरण की नीति के कारण आज विश्व इतिहास में पहली बार व्यक्तियों की संपत्ति राज्य की संपत्ति से ज़्यादा हो गई है। पैसा पैसे को खींचता है। कथन के अनुरूप तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की संपत्ति विकसित देशों की तरफ भाग रही है और इन गरीब देशों की संपत्ति उसके अपने अमीरों के हाथों में सिकुड़ रही है। मात्र 1% लोग देश की 50% संपदा के मालिक हैं और सिर्फ 10% कुल 75% संपदा के। बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा और अवसाद के कारण आत्महत्या आम बातें हो गई हैं। गांधी ने कहा था, यह सभ्यता ऐसी है कि इसकी चपेट में आए हुए लोग खुद की जलाई हुई आग में जल मरेंगे। यह सभ्यता खुद का नाश करने वाली और खुद भी नाशवान है। मानवता की इन्हीं चिंताओं से जुड़े होने के कारण हिंद स्वराज एक ग्लोबल टेक्स्ट माना जाता है। यह पुस्तक स्थानीयता से उपजी सार्वभौमिकता का अनूठा उदाहरण है। गांधी एक ही साथ सार्वभौम और स्थानीय दोनों ही हैं। गांधी की स्वदेशी की अवधारणा कहीं से भी विश्व विरोधी नहीं है और न ही उसमें कहीं संकीर्णता है। वह कहते थे कि मेरी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेरा गांव ही मेरी दुनिया है और मेरी आध्यात्मिक जरूरतों के लिए समूची दुनिया मेरा गांव है। उन्होंने अस्पष्ट शब्दों में कहा है, मैं नहीं चाहता कि अपने घर के चारों ओर दीवार उठा लूं या उसकी खिड़कियां बंद कर लूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि हमारे घर और देश में सभी देशों की संस्कृतियों की हवा बेरोक टोक आए, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके झोंके से मैं खुद ही गिर जाऊं। उनके स्वदेशी का अर्थ अपने आसपास से उत्पन्न संसाधनों के आधार पर जीवन यापन की शैली विकसित करने की रणनीति है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के व्यामोह में पड़े बुद्धिजीवियों ने स्वदेशी की अवधारणा को पूरी दुनिया से कटकर गांव में ही बने रहने की वकालत के रूप में दिखाने की कोशिश

0: की और एक राष्ट्रवादी के रूप में उनके अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष को प्रदर्शित किया। आज उनकी उक्तियों के अर्थ स्पष्ट होने लगे हैं जब वैश्वीकरण के अंतर्विरोध सामने आने लगे हैं। अरबपतियों खरबपतियों की बढ़ती संपत्ति, शहरों की बिल्डिंगों की बढ़ती ऊंचाई के साथ ग्रामीण गरीबी, शहरी स्लमों, गंदी बस्तियों की बढ़ती संख्या, बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े, कुपोषण, भुखमरी एवं आत्महत्या की मजबूरियां गांधी के द्वारा नीति निर्देशकों को दिए उस संदेश की याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आप योजनाएं बनाओ तो अंतिम छोर पर जो गरीब व्यक्ति बैठा है उसका ध्यान रखो। उनका मकसद था कि मानव विकास का केंद्र बिंदु होना चाहिए दौलत और मुनाफा नहीं। 85% लोगों की कब्र पर 5% लोगों के लिए सुख की सेज बिछाना संभव नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि हम अपने संस्कृति के मूल मंत्रों को भूलकर पश्चिम द्वारा बताए मापदंडों पर अपने प्रजातंत्र, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण को तौल रहे हैं। आज के वैश्वीकरण के नौ साम्राज्यवाद के युग में हमें उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में गांधीवादी उपायों का ही प्रश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतों का सामना करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। गांधी ने कहा था कि भारत का भविष्य तो सरल धार्मिक जीवन द्वारा प्राप्त शांति के अहिंसक रास्ते पर चलने में ही है। भारत के माध्यम से वह विश्व की अधिकाधिक सेवा करना चाहते थे, लेकिन वह भारतीय अस्तित्व का आधार सर्वजन हिताय के दर्शन में निहित मानते थे। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि ये वह उनका देश है जिसके निर्माण में उनकी आवाज़ का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेलजोल होगा। शेष सारी दुनिया से हमारा संबंध शांति का होगा, यानी न तो हम किसी का शोषण करेंगे और न किसी के द्वारा अपना शोषण होने देंगे। गांधी के सर्वोदयी समाज में जहाँ एक तरफ सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है तो दूसरी तरफ वसुधैव कुटुंबकम का।
1: आज के लिए गांधी कथा में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर प्रस्तुत होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।
2: अभी आपने गांधी कथा में वार्ता सुनी, विषय था गांधी और वैश्वीकरण। वार्ताकार थे डॉक्टर विजय कुमार। कार्यक्रम है अब गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। समय हो गया है 7:30। फिल्मी नगमों की बारी है। शुरुआत करते हैं कलयुग फिल्म के इस नगमे के साथ।

अभी आपने सुना कलयुग फिल्म का नगमा। आवाज़ राहत फतेह अली खान की थी, गीत लिखा था सईद कादरी ने, संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब आज के अखबारों को टटोलते हैं, क्या कहते हैं आज के अखबारों की सुर्खियां। अगर इसे हम टटोलना चाहें तो हमें सबसे पहली सुर्खी ये मिली, 21 आईएएस अफसरों का ट्रांसफ़र, 11 जिलों में नए डीएम बने। आनंद 10 साल बाद परीक्षा समिति से हटे, अलंकृता भारत की डीएम बनी, क्षमा करें अलंकृता भागलपुर की डीएम। जिन जिलों के जिलाधिकारी बदले गए उनमें भागलपुर में आई अलंकृता पांडे, मुजफ्फरपुर में कुमार गौरव, कुंदन कुमार पटना, उदिता सिंह नालंदा, अंशु अग्रवाल बांका, समीर सौरभ गोपालगंज, सौरभ सुमन पूर्वी चंपारण, नवीन कुमार किशनगंज, विक्रम बिचरकर खगड़िया और दीपक मिश्रा रोहतास के डीएम बने। अतुलेश भागलपुर के सिटी एसपी बने, 12 जिलों के एसपी भी बदले गए। ये अखबारों की सुर्खियां हैं। इसके अलावा अखबार की सुर्खियों में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.6 और शहरों में 2 गुनी महंगी हुई जमीन, नई दरें आज से लागू हुई। हालांकि घर की महिलाओं और जमीन देने वाले किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है, रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी का बोझ भी बढ़ा है, रजिस्ट्री शुल्क और टैक्स में वृद्धि हुई है। ये आज के अखबार की सुर्खियाँ हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से जनता के नाम संबोधन में कहा गया, अपराधी परेशान करे तो पुलिस को बताएं, अगर पुलिस भी ना सुने तो हमें बताएं।

0: इस शीर्षक से अखबार ने विशेष खबर छापी है। इसके अलावा ईरान अमेरिका युद्ध के बारे में अखबार ने बहुत विस्तृत रूप से छापा है। 100 दिन बाद अमेरिका ईरान में शांति समझौता, 7500 मौतें, 162 लाख करोड़ रुपए फूंके गए तब शांति आई। पहली बार 110 दिन एरियल वॉर ग्राउंड फोर्स नहीं उतरी। जंग बहुत भीषण और ये कतई मानवता के लिए उचित नहीं, अखबार लिखता है। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा और सख्त होगी। सीमावर्ती 7 जिलों में कार्यरत सभी बैंक कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ये आज के अखबारों ने इसे भी सुर्खी बनाई है। इसके अलावा मौसम से जुड़ी हुई खबर छपी है। स्थानीय वायुमंडलीय दबाव और पर्याप्त नमी की कमी की वजह से नहीं हो रही है बारिश। 2 दिन से छा रहे काले मेघ पर बरस नहीं रहे और तापमान 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 28 से 29 डिग्री न्यूनतम बना हुआ है। ये आज के अखबारों की सुर्खियां हैं मौसम को लेकर। इसके अलावा जिला टास्क फोर्स की बैठक में 6.74 लाख बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य। 28 जून से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान। ये भी आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों में पहुंचे परिजन, वर्दी में बच्चों को देख हुए गौरवान्वित। CTS में 984 प्रशिक्षु सिपाहियों को IG ने दिलाई कर्तव्य निष्ठा की शपथ। इसके अलावा अगर हम देखें अन्य खबरों की तरफ तो अखबार एक सर्वे के हवाले से लिखता है, AI इस्तेमाल न करने से नौकरी गंवाने का 18% खतरा, कम AI उपयोग वालों में छटनी का जोखिम 3 गुना। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर और AI ऑपरेट करना नहीं आता है तो आपकी नौकरी पर भी इससे आँच आ सकती है। आज के अखबारों ने इसे विशेष रूप से छापा है। इसके अलावा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में टॉप 200 विश्वविद्यालयों में सिर्फ 3 भारतीय संस्थान, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। इसके अलावा खेल के खबरों में अगर हम देखें तो मैच डे 7 फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त दी। क्रोएशिया 6 मैच बाद ग्रुप स्टेज में हारा है। लगातार तीसरी बार ओपनिंग मैच जीता इंग्लैंड। 3 मिनट का ब्रेक बना मोमेंटम किलर। इस दौरान 85 करोड़ तक के एड स्लॉट। फीफा वर्ल्ड कप में अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक पर विवाद। अमेरिका में इस दौरान ब्रॉडकास्टर खेल विश्लेषण की जगह विज्ञापन दिखा रहे। और अखबार विशेष रूप से एक खबर छापता है जिसमें बताया गया है कि IPL 19वां सीजन अब तक का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला संस्करण रहा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रीजनल भाषाओं का वॉच टाइम भी बढ़ा। टूर्नामेंट जल्द कराने की कोशिश में BCCI 2 हफ्ते जल्दी शुरू होगा। IPL पहले अप्रैल और मई महीने में कराया जाता था लेकिन अब इसे मार्च महीने में कराने की योजना पर काम हो रहा है। तो ये आज के अखबारों की सुर्खियां थी। अब अखबारों की सुर्खियों को समेटते हैं और एक अंतराल के बाद एक और प्यारा सा नगमा हम आपके लिए लेकर आते हैं।
1: Future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.

0: अभी आपने सुना कहीं प्यार ना हो जाए, इस फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें थी कुमार सानू, अलका याग्निक, कमाल खान और साथियों की। गीत सुधाकर शर्मा ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अब ये सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा नगमा शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में कल हो ना हो फिल्म से।
1: जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अब आज के इतिहास को टटोलने की बारी। आज के इतिहास में आज 19 जून के बारे में क्या लिखा है इसे देखने पर सबसे पहली जो घटना हमें प्राप्त हुई 1996 में 19 जून को बौद्धिक संपदा कानून IPR पर चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में समझौता हुआ था। प्रसिद्ध अंपायर डिकी बर्ड MCC की आजीवन सदस्यता से सम्मानित हुए थे। इसके अलावा 1999 में कोलोन जर्मनी में समूह 8 यानी G8 की शिखर बैठक प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा फिनलैंड के प्रथम महिला प्रधानमंत्री एंजेली जटिन मांकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था 2003 में 19 फरवरी को। और उत्तराखंड सरकार ने गंगा पर निर्माणाधीन 480 मेगावाट की पाला मैनरी 380 वाट की बहनोधारी परियोजना को स्थगित कर दिया था 2008 में 19 जून को। इसके अलावा उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का जन्म हुआ था 1931 में 19 जून को। राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता 1970 में 19 जून को उनका भी जन्म हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे माधवराव सुप्रे, उनका जन्म हुआ था 1871 में 19 जून को। और भारतीय मिमिक्री कलाकार नरेला वेणु माधव का निधन हो गया था 2018 में 19 जून को। आज विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। तो ये आज का इतिहास जो हमने आपसे साझा किया कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम में। अब वक्त नहीं और ज़्यादा कि हम आपसे और कोई बातचीत कर पाएँ, कोई गाना सुनवा पाएँ, तो दीजिए अब इस कार्यक्रम को समेटने की अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं समाचारों के लिए। अब आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
4: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
4: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
5: नरेंद्र मुझे बहुत खुशी, आपका नीत एवं فرهنگی 300 به دور کلیه سواگت کرده خانس آبرد که دوستی امر رای.
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
6: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकी

0: और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने

0: अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोक सत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होरमोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par lambe samay tak bharosa kiya ja sake. Aur aise samay mein Bharat vishwa mein ek trusted partner ke roop mein ubhar raha hai.
2: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 saal ke is kaalkhand mein Bharat ka GDP doguna hua hai, airport ki sankhya doguni hui hai, universities ki sankhya bhi doguni ho gayi hai, highway construction ki speed 3 guna badh gayi hai aur metro network 4 guna bada ho gaya hai.
2: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message, Bonjour Modi, or Hello Modi, and chants of Bharat Mata Ki Jai.

0: dailies today. Trump Pezeshkian signed Fellen Marie peace accord, headlines the Statesman, while the Indian Express headline reads, deal ending war gives Iran critical economic lifeline. The Times of India leads with the headline, Versailles the second, Trump rushes where historians would dread to tread. In Paris, Prime Minister Modi has asserted that AI, that is artificial intelligence, means all-inclusive for us and dubbed India a tech hub, writes the Asian Age. And finally, the Indian Express reports that a massive 1,200-year-old oak tree in Sherwood Forest in Nottinghamshire, England, which is said to have once sheltered Robin Hood, has died. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अक्वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमेरिकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नोयत को सिर्फ तिजारत से ही परखा जाता था, लेकिन आज भरोसा भी उतना ही अहम बन गया है जितनी के तिजारत है।
3: हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगा रहा है जिससे आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, इख्तिरा और मौकों को तकवीत मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के शहर एवियो में G7 की मीटिंग के दौरान एतमाद और भरोसे पर मबनी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का पैगाम बिल्कुल वाज़े था कि आलमी हुक्मरानी तभी मुअस्सर साबित हो सकती है जब ये सबकी शमूलियत वाली हो। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो फ्रांस में एक ऐसे वक्त आए हैं जब उनकी सरकार ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन वर्षों में मुख्तलिफ शोबों में भारत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं।
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना

0: इतना बड़ा हो गया है।
1: इससे कबल फ्रांस में भारतीय बिरादरी ने बोंजोर मोदी या हेलो मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। वजीरे आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के तीसरे मरहले में पेरिस का कामयाब और मुफीद दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के इख्तिताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है।
2: Priez Maître Narenda, Mouji Baou Scoutier, oui Afghanis, Evian, Paris, Mangi Tesadre, Daure Kelie, Kouagat Karke, Hans Obarak, Kidosti Amarai.
1: पेश है वजीर आजम के पेरिस के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामा निकार की एक रिपोर्ट।
3: पेरिस में नीस में भारत इनोवेट्स और वीवा टेक 2026 का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई इख्तराई कुव्वत का मुशाहिदा कर रही है। वीवाटेक सरबराह मीटिंग में जनाब मोदी ने आलमी इख्तराकारों पर जोर दिया कि वो भारत के साथ मिलकर सभी के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस दौरे में भारत और फ्रांस ने तिजारत तकनीक और आलमी सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। फ्रांस की सरगर्दा टेक कंपनियों ने भारत की तरक्की के सफर में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग मसनूई जहानत और ग्रीन बहरी बुनियादी ढांचे के शोबों में और ज्यादा शमूलियत के मंसूबों का ऐलान भी किया। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीबात से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाजाबता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
3: मस्कुर स्कीम कारकुनों और आजिदों की बाजाबता मईशत में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई की खातिर तैयार की गई है। इसके तहत पहली बार के मुलाजमीन 15,000 रुपए तक की तरकीब हासिल करने के अहल होंगे। इस तरह उन्हें अफरादी कुव्वत में शामिल होने पर अहमियत की हामिल मदद मिलेगी, जबकि इजाफी रोजगार के मौके दस्तियाब कराने वाले आजिरों को हर इजाफी मुलाजिम रखने पर 3,000 रुपए महाना तक की तरकीब मिल सकेगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पिछले साल यकुम अगस्त को नाफिज हुई थी। इसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने को फरोग देना और मईशत के सभी शोबों में सोशल सिक्योरिटी दायरे को वसत देना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर दिया गया है। इसका मकसद दो साल के अरसे में मुल्क में मुलाजिमत के 3.5 करोड़ से ज्यादा मौके दस्तियाब कराना है। दिल्ली से प्रिया मॉन्डल की रिपोर्ट के साथ नामे के लिए शमीम इरफान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। वजारत के मुताबिक तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कीमतों की इमदादी स्कीम के तहत ये सरकारी खरीद की जाएगी। साल 2026 के मौसम गर्मा के सीजन के लिए मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद होगी। वहां 48,298 मैट्रिक टन मूंग, 97,970 मैट्रिक टन उड़द और 41,718 मैट्रिक टन मूंगफली की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। गुजरात में इस मौसम गर्मा के सीजन के लिए 18,250 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। मंजूर शुदा सरकारी खरीद की कम अज कम इमदादी कीमत की मालियत 160 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है। वजीर मौसूफ ने रबी मार्केटिंग सीजन के तहत तमिलनाडु के लिए मूंग की सरकारी खरीद की हद 885 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मैट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी है। इस तरह फसल की 105 मैट्रिक टन इजाफी सरकारी खरीद हो सकेगी। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने

0: हरियाणा के लिए मौसम गर्मा के सीजन के दौरान 2115 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मजकूरा दिन सिकल सेल की बीमारी SCD के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाने के मकसद से हर साल मनाया जाता है। इस दिन बीमार अफराद को लाहिक चैलेंजों को उजागर किया जाता है और बेहतर तहकीक फंडिंग और मुसावियाना इलाज मुआलजे की हिमायत की जाती है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया अपनी आबाई रियासत ओडिशा के दो रोजा दौरे के लिए आज दोपहर मयूरभंज जिला पहुंचेंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निकाज से।
1: मयूरभंज जिले में अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अवामी फलाह बहबूद देही तरक्की और कबायली बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। रायरंगपुर में सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर की जानिब से मुनाकिद एक हेल्थ कैंप पहुंचेंगी और देही इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी की फराहमी से मुतालिक एक बड़े मरबूत प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन एक नए खसूसी सर्किट हाउस और नए तामीर शुदा रायरंगपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। आकाशवाणी भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन लद्दाख के लेह में आज से शुरू होने वाली योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए वहां के तीन रोजा दौरे पर रहेंगे। ये जनाब राधाकृष्णन का मरकज के जेर इंतजाम इलाके का पहला सरकारी दौरा होगा जो इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदामात किए हैं। आज हम शिमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात का जायजा ले रहे हैं।
1: अगर मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शुमाल मशरिक को नज़रअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खित्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद नाकाबंदी और नज़रअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वज़ीर आज़म ने 83 मरतबा से ज्यादा शुमाल मशरिक का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। गुज़श्ता 12 साल में 8 नए हवाई अड्डे बिल्कुल नए सिरे से तामीर किए गए हैं। इससे पहले 2014 में इनकी तादाद 9 थी जो अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान स्कीम के तहत 90 रास्ते और 12 हवाई अड्डे फ़ाल हो गए हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए एटानगर के डेरा नुतुंग गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 3 घंटे में 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो रोड कनेक्टिविटी जो थी वो अपर्याप्त थी या सिंगल लेन हुआ करती थी, अभी 4 लेनिंग हो गई है।
1: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए गुवाहाटी के एक रिहायशी ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में रोड और फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और काफी सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है, तो ये काफी हम लोग खुश है।
1: दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज के लिए सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों में बहरी जहाजों की आमद रफ्त पर अमेरिकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर सभी कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। सोशल मीडिया की एक बयान में अमेरिका की मरकजी कमान ने ये जानकारी दी है। हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर लगातार 3री कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी

0: सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने अमरीका ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखत किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के सुदूर ने 14 निकाती माहदे की तौसीक की जिसमें अबनाए हुरमुज खोलने और पाबंदियों में नरमी किए जाने का फ्रेमवर्क शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वाइबर्टिक 2026 से खिताब करते हुए कहा कि मसनू जहानत AI की तरक्की में सबकी शमूलियत तहफ़ और अवामी मफाद के बुनियादी असूलों पर मबनी होनी चाहिए। इस खबर को अखबार ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरकीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमेरिकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 गोल से हरा कर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
5: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
6: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
5: जब होगा पूरा प्रयास हमारा तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर, पटना और छपरा में आयोजित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाया, जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क होंगे महंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 21 और भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला, त्यागराजन SM बिहार बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। और PCA की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में रक्सौल की अक्षरा गुप्ता ने 126 गेंदों पर 13 शतक का रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वे पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री वैष्णव पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI का दौरा करेंगे।
1: श्री वैष्णव STPI में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे पाटलिपुत्र जंक्शन से छपरा जाएंगे। केंद्रीय मंत्री छपरा रेलवे स्टेशन पर छपरा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस और दोहरी घाट ओडिहार रेल सेवा के वाराणसी तक विस्तार का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। बाद में श्री वैष्णव मढ़ोड़ा स्थित रेल इंजन कारखाने का दौरा करेंगे और 91वें निर्यात लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: राज्य सरकार ने लगभग एक दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी MVR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 गुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क महंगे होंगे। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष MVR में स्वतः 5% की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं MVR में भूमि की श्रेणी का भी नए सिरे से निर्धारण किया गया है। ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र में भूमि की 7 श्रेणियां जबकि शहरी और महानगरीय क्षेत्र में भूमि की 6 श्रेणियां निर्धारित की गई है। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है। समाचार कच्छ से राहुल कुमार।
0: राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटना सहित 11 जिलों में नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निवर्तमान अध्यक्ष आनंद किशोर को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार को पटना का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। उदिता सिंह नालंदा की नई जिलाधिकारी होंगी। CY भोटिया जहानाबाद, दीपक कुमार मिश्रा रोहतास, सौरभ सुमन यादव पूर्वी चंपारण, अलंकृता पांडे भागलपुर और विक्रम वीरकर खगड़िया के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। अंशुल कुमार को बांका, समीर सौरभ को गोपालगंज, नवीन कुमार को किशनगंज और कुमार गौरव को मुजफ्फरपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: इधर गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 13 जिलों में नए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। विक्रम सिंह को सहरसा, उपेंद्र नाथ वर्मा को औरंगाबाद, भानु प्रताप सिंह को खगड़िया और शुभांक मिश्रा को वैशाली का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं कुमार गौतम पश्चिम चंपारण के, अमितेश कुमार बांका के, शौर्य सुमन पूर्णिया के, हिमांशु शेखपुरा के और राजेश कुमार बघा पुलिस जिला के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। इसके अलावा शिखर चौधरी को कैमूर, परिचय कुमार को कटिहार, कोटा किरण कुमार को जहानाबाद और शैलेंद्र सिंह को शिवहर का

0: नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। राज्य सरकार किसानों और सहकारी संघों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बिहार राज्य विपणन सहकारी संघ का गठन करेगी। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बिस्कोमान की तर्ज पर गठित होने वाले इस संघ से किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, साथ ही कृषि और सहकारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि संघ की अंश पूंजी 500 करोड़ रुपए तय की गई है। मंत्री ने बताया कि संघ के निदेशक मंडल में 17 सदस्य होंगे। बियाडा की परियोजना समाशोधन समिति ने 30 औद्योगिक इकाइयों के लिए 26.59 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इन इकाइयों से राज्य में 627 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि इन औद्योगिक इकाइयों से 3000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की 157 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री चौधरी 238 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 114 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि 47 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 43 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहेंगे। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से आज से पटना के पामेती सभागार में 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में विभिन्न जिलों के आम उत्पादक किसान शामिल होंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में पिछले 6 दिनों से मॉनसून निष्क्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 4-5 दिनों के दौरान मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। इधर विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पटना, गया और भागलपुर समेत 10 जिलों में भी तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट है।
4: दिनांक 19 जून राज्य के बेगूसराय, लखीसराय एवं मुंगेर जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों बांका, भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, नालंदा, नवादा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं छपरा, कैमूर, शेखपुरा

और बक्सर में लू जैसी स्थिति रही। भागलपुर में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में पूर्वी चंपारण के रक्सौल के 19 वर्षीय बल्लेबाज अक्षरा गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 126 गेंदों पर नवाद 306 रन बनाए। अपने रिकॉर्ड पारी में अक्षरा ने 55 चौके और 8 छक्के लगाए। घरेलू क्रिकेट में मुंबई की इरा गुप्ता के बाद यह महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारियों में से एक है। अक्षरा की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत टीम ए ने 40 ओवर में 450 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में टीम सी 121 रन पर ही सिमट गई। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब बिना इंटर्नशिप के छात्रों को स्नातक की डिग्री नहीं मिलेगी। बिहार लोक भवन ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि चौथे सेमेस्टर के छात्रों के लिए 120 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में बेगूसराय जिले के मध्य विद्यालय मोहनपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय को 27वां स्थान मिला है। विद्यालय को यह उपलब्धि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण, पौधारोपण तथा छात्र सहभागिता जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिली है। समस्तीपुर से पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मूसापुर और धर्मपुर मोहल्ले में बंधक बनाकर रखे गए 105 युवक युवतियों को पुलिस ने मुक्त कराया। इन सभी पर चेन मार्केटिंग के जरिए नए लोगों को जोड़ने के लिए दबाव बनाया जाता था। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं समेत 9 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस नेटवर्क के सरगना की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना स्थित निगरानी की अदालत ने पथ निर्माण विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह, उनकी पत्नी अल्पना सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों की अवैध संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुनाया है। जब्त की जाने वाली संपत्ति का बाजार मूल्य 1,14,00,000 रुपए से अधिक है। अवधेश कुमार सिंह को सीबीआई ने वर्ष 2009 में दिल्ली के एक होटल से 2,50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया था। बक्सर जिले के सरस्ती गांव के पास ठोड़ा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेढ़ुआ गांव में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नामचीन बसेरा बड़ चौराहे के पास एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में से एक सुनील कुमार अररिया के पूर्व सांसद रामजी दास ऋषि का पुत्र है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, मध्य पूर्व जंग, अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, महंगी हुई जमीन, गांव में 1.6 गुना तो शहरों में 2 गुना हुआ सर्किल रेट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 21 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, 11 जिलों में नए टीएम बने, 12 जिलों के एसपी भी बदले गए। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, एएन कॉलेज समेत 10 कॉलेजों में अब रात 8 बजे तक होगी पढ़ाई। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, सूबे में हर हाल में कायम रहेगा कानून का राज, सम्राट चौधरी। आज अखबार लिखता है, बिहार के नए महाधिवक्ता बने एसटी संजय। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर, पटना और छपरा में आयोजित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाया, जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क होंगे महंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला, त्यागराजन।

0: सैम बिहार बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए और बीसीए की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में रक्सौल की अक्षरा गुप्ता ने 126 गेंदों पर नाबाद 13 शतक का रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

0: AIR at 90.
1: मीडियम वेव 205.74 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:06 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जानवर फिल्म के इस नगमे के साथ।

0: अभी आपने सुना फिल्म जानवर का नगमा। सुखविंदर सिंह, कुमार सानू, जसविंदर नरूला, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें थीं। गीत लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। कार्यक्रम है नगमे नए पुराने।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3 year warranty. TNC applies.

0: अभी आपने बादल फिल्म में सुखविंदर सिंह, जसविंदर नरूला, अनुराधा पोडवाल और साथियों को सुना। कार्यक्रम है नगमे नए पुराने। वक्त एक छोटे से अंतराल का।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
0: कार्यक्रम की अगली पेशकश है लोफर फिल्म से आशा भोसले की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

अभी आपने लोफर फिल्म में आशा भोसले को सुना। गीत लिखा था अनिल बख्शी ने, संगीत बद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं छुपा रुस्तम फिल्म में अलका याग्निक को। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत बद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

0: छुपा रुस्तम फिल्म के इस नगमे के साथ ही आज के इस नगमे नए पुराने कार्यक्रम का समापन होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम, कलाकार हैं अनुपमा कुमारी। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे आइए सुनते हैं गुरु नानक की ये भक्ति रचना।

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में अनुपमा कुमारी को सुन रहे हैं। कबीर दास की इस भक्ति रचना को सुनने के बाद अब आइए सुनते हैं इनसे सूरदास के भक्ति रचना।

0: अभी आपने सुगम संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में अनुपमा कुमारी से कुछ भजन सुने।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
0: सुगम संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए अनुपमा कुमारी से भाई ये सुनते हैं कुछ गीत रचनाएं। सबसे पहले गोपाल दास नीरज की ये गीत रचना।

अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में अनुपमा कुमारी को। ललित गोस्वामी के लिखे इस गीत के बाद अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सोहनलाल द्विवेदी की गीत रचना।

0: अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में अनुपमा कुमारी को सुन रहे थे।
1: समय पर बुवाई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: मीटिंग वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से के अंतर्गत कुछ फिल्में नगमे। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जॉनी मेरा नाम इस फिल्म के इस नगमे के साथ।
3: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
4: जी, मेरा असली नाम जॉनी।
3: और नकली?
4: नकली भी जॉनी।
3: इसके अलावा भी कोई नाम है?
4: जी हाँ, जानी। आपको ज्यादा पसंद है?

पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम के आरंभ में आपने जॉनी मेरा नाम फिल्म का नगमा सुना। कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया था। लिखा था इंदिवर ने, आवाजें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की। अब आइए सुनते हैं रखवाला फिल्म का नगमा। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने, आवाज लता मंगेशकर की है।

अभी आपने रखवाला फिल्म का नगमा सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने, आवाज लता मंगेशकर की थी। अब आइए सुनते हैं प्रोफेसर फिल्म का नगमा। हसरत जयपुरी ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, आवाज लता मंगेशकर और आशा भोसले की।

अभी आपने सुना वक्त फिल्म का ये नगमा, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, संगीतबद्ध किया था रवि ने, आवाज़ आशा भोसले की थी। अब आइए सुनते हैं थोड़ी सी बेवफाई, इस फिल्म का ये नगमा। गुलजार ने इसे लिखा है, संगीतबद्ध किया है खय्याम ने, आवाज़ें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

0: पुरानी फिल्म मौसीकी कार्यक्रम के आखिर में आपने शर्मीली फिल्म का नगमा सुना। गीत लिखा था नीरज ने, संगीतबद्ध किया था एसटी बर्मन ने। इसके साथ ही आज के इस पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का समापन हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
7: सुनो ना।
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
7: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम, कलाकार हैं राजेश कुमार पंडित।
1: बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: लोकगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये मनोन गीत।

0: अभी आपने राजेश कुमार पंडित से ये लोक भजन सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत, कलाकार हैं राजेश कुमार पंडित।
1: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप लोकगीत कार्यक्रम में राजेश कुमार पंडित को सुन रहे थे। लोकगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुलमोहर से। गायक कलाकार हैं कविता सेठ, गीत शैली ने लिखे हैं और इसे संगीतबद्ध किया है एलोन डिमोस और सिद्धार्थ खोसला ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अरिजीत सिंह एवं शिप्रा रॉ के स्वर में आप सुन रहे थे कुमार की गीत रचना। संगीतकार थे अनिरुद्ध रविचंद्र एवं फिल्म थी जवान। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुमराह से। गायक कलाकार है जुबिन नौटियाल एवं अमन त्रिखा। गीत मिथुन के हैं और संगीतकार भी हैं मिथुन। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
4: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
5: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह एवं श्रेया घोषाल के स्वर में। फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

ज़रा हटके ज़रा बचके, इस फिल्म के अरिजीत सिंह की गाही इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम लेकर आप सबों का पसंदीदा कार्यक्रम गुलदस्ता। दोस्तों, हमें इस बात का अंदाज़ा है कि आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं हमारे इस कार्यक्रम का, तो बिना वक्त गंवाए आइए शुरू करते हैं आज के गुलदस्ता कार्यक्रम का। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी बदौलत पीढ़ियों से हमारा ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन होता आया है। दोस्तों, हम बातें करेंगे एक ऐसे माध्यम की जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों तक आवाज़ बनकर उनके जीवन में संगीत, समाचार, ज्ञान और भावनाओं के रंग भरे। आज का विषय है रेडियो, यादों से लेकर आधुनिक दौर का सफ़र। दोस्तों, जब मनोरंजन के साधन सीमित थे तब एक छोटा सा रेडियो पूरे परिवार को एक साथ बैठने का कारण बन जाता था। सुबह की जो धुन हम सुनते थे रेडियो पर, वो अपने आप में एक अलग सा जोश हमें हमारे अंदर भर देता था और हमारा जो सुबह की हमारी शुरुआत होती थी वो उस धुन से बेहद खास होती।

जाती थी, मंगल ध्वनि की आवाज़ जब हमारे कानों में जाती थी तो हमें बेहद सुकून सा महसूस होता था। दोस्तों, जब शाम के समय घर के आंगन की चारपाई बिछती थी, चाय की प्यालियां सजी और रेडियो पर बजते गीत पूरे माहौल को एक खुशनुमा और मधुर बना देते थे। समाचार हों, नाटक हों, कविताएं हों या किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम, रेडियो हर उम्र के लोगों का साथी बन जाता था।

जी हाँ दोस्तों, रेडियो के माध्यम से जो बातें हम तक पहुंचती थी या पहुंचती हैं उनकी प्रामाणिकता एवं गुणवत्ता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक टीम है जो इसके पीछे हर वक्त काम करते रहती है। जब तक हमारा रेडियो सेट ऑन होता है मित्रों, तब तक हमारी जो टीम है वो इसकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता पर नित निरंतर ध्यान देते रहती है कि कोई भी चीज़ जो आपके हमारे माध्यम से आप तक पहुंच रही है वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण हो और उसकी प्रामाणिकता भी हम देखते हैं कि किस कितनी ये प्रामाणिक हैं आपके चीज़, आपके पास पहुंचने वाली चीज़ें। हम हमेशा ये ख्याल रखते हैं मित्रों कि कोई भी भ्रामक बातें आप तक ना पहुंचे। मनोरंजन की जब बात आती है तो हम ये ख्याल रखते हैं दोस्तों कि मनोरंजन के आड़ में अश्लीलता आप तक ना पहुंचे। तो हम कोई भी चीज़ जो हमारे माध्यम से आप तक पहुंचती है, हमारा ये हम ये प्रयास करते हैं कि आपके पास पहुंचने वाली हर चीज़ आपके ज्ञान का वर्धन करे, आपका मनोरंजन करे और समाज को एक अच्छे दिशा की ओर अग्रसर करे, ना कि फूहड़ और अश्लील बातों से, चीज़ों से, गानों से हमारे समाज को दिग्भ्रमित करे। दोस्तों, कई पीढ़ियों से जैसा कि हम जानते हैं कि इस रेडियो को हम जो हमारे रेडियो को एक नाम मिला है आकाशवाणी, तो इसे जोड़ा भी गया है मित्रों। आकाशवाणी जब हम बहुत पीछे जाते हैं तो कुछ हम जब रामायण और महाभारत युग की बात करते हैं तो उस टाइम आकाशवाणी के माध्यम से जो हमें बहुत सारी प्रसंग में नज़र आता है कि आकाशवाणी हुई और ये हुआ वो हुआ, तो उसी चीज़ को हम जब अपने पुराने ज़माने में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो आवाज़ें रेडियो सेट के माध्यम से हम तक पहुंचती है उसमें ना कोई बोलने वाला दिख रहा है, ना वो व्यक्ति नज़र आ रहा है जिसके माध्यम से ये आवाज़ हम तक पहुंच रही है, ना कोई केबल कनेक्ट किया हुआ है, ना कुछ। तो ये आवाज़ आती कैसे है? तो यहीं से शुरुआत हुई आकाशवाणी की। तो दोस्तों, कई सारी घटनाएं हैं जो कल, आज और कल की कड़ी को रेडियो की जो ये हमारी रेडियो का जो ये स्वर्णिम इतिहास है उसको बयां करती है।

हाँ, तो दोस्तों रेडियो की हम बातें कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं कल, आज और कल की। दोस्तों एक समय था जब रेडियो हर घर में हमें मिल जाता था। हम सुबह भजन का आनंद लेते थे, रामचरितमानस गान को सुनकर भक्ति भाव से सराबोर हो जाते थे। दिन में महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम और शाम को जब किसान भाई अपने अपने काम निपटाकर घर में आराम से रेडियो सेट पर खेती किसानी और मौसम से जुड़ी

बातें जब जानते थे तो उन्हें ये पता चल जाता था कि कल का जो दिन होगा वो कैसा होगा, हमने जो ये खेतों में जो फसल बोए हैं उनके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, किस तरह से हम अपने फसलों को कीट नाशकों का किस तरह से उपयोग करेंगे, कई सारी खास बातें जो रेडियो सेट्स के माध्यम से उन तक पहुंचती थी, तो उन्हें बहुत ही सुकून मिलता था कि चलो अब हमें किस तरह से हम अपने फसलों को साइंटिफिक तरीके से बेहतर बनाकर अच्छा उपज अच्छी पैदावार हम पा सकते हैं। तो दोस्तों कितना सुकून मिलता होगा उस वक्त जब कोई भी ज्ञानोपार्जन का जो माध्यम है वो बस एक रेडियो सेट था और उसके माध्यम से हम कई सारी ऐसी बातें जान जाते थे जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, या कई सारे ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में किसान भाई जानते थे कि किस अगर कोई नई फसल हमें लगानी है तो उसको उसका हम देखभाल कैसे करें, किस कितना पानी देना है, कितना खाद देना है, किस तरह से बीज की बुआई करनी है, कई सारी बातें। और गीत संगीत की तो बात ही अलग है मित्रों, हम गीत संगीत के माध्यम से अपना मनोरंजन तो करते ही थे, साथ ही साथ हमें देश दुनिया की खबरें, मौसम का हाल, खेलों की जानकारी भी हमें मिलती थी। सरकारी योजनाओं का जो लाभ होता है वो किस तरह से हम उठा सके, सरकारी योजनाओं की के सूचनाओं के माध्यम से हम तक पहुंच जाती थी। समय बदला, टेलीविज़न आया, फिर इंटरनेट और स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ। बहुतों को लगा कि शायद रेडियो अब पीछे छूट जाएगा, लेकिन रेडियो ने समय के साथ खुद को बदला। FM चैनल्स के माध्यम से हम कई सारे ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिसके बदौलत आज भी हमारे साथ कई सारे ऐसे श्रोता जुड़े हुए हैं जिनका हम बेहद ख्याल रखते हैं और वे भी हमारा ख्याल रखते हैं। तो क्योंकि समय समय पर आपके ईमेल और चिट्ठियाँ, पत्र, कई सारे तरीके से आप की जो भावनाएं हैं वो हम तक पहुंचते रहती हैं, तो ये बात हमको हमें बेहद खास लगता है मित्रों, क्योंकि आपके जो सुझाव, आपकी शिकायतें, आपके गानों की फरमाइशें जब हम तक आती हैं तो हम ये अपने आप में प्रफुल्लित होते हैं कि चलो अभी भी हमारे आवाज़ को सुनने वाले लोग हैं। तो इस बात का हमें अपने आप पर गर्व होता है कि चलो हमने किसी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम अपने रेडियो की जो बात कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि ये जो रेडियो है ना वो एक ऐसी आवाज़ है जो हम जिसके माध्यम से कई सारे श्रोताओं को अपने आप से जोड़ कर रखते हैं। कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ से प्रसारित होते हैं जिनमें श्रोताओं की आवाज़ को भी सुनाया जाता है, जैसे कि हमारा फ़ोन इन प्रोग्राम जो है उसके माध्यम से आप अपनी आवाज़ को भी सुन सकते हैं और आपके पसंद के गीत तो होते ही हैं। तो दोस्तों ये रेडियो को जो आपका आपके मनोरंजन और ज्ञानवर्धन का साधन है उसके बारे में अभी और भी बातें करते हैं, सुनते हैं पहले ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, मन का रेडियो बजने दें, ज़रा अपने मन के रेडियो को हमेशा ऑन रखें आप। दोस्तों हम बातें कर रहे हैं रेडियो से जुड़े जो बातें प्रसारण हमारे तक हम तक पहुंचते हैं उनके बारे में। दोस्तों आज भी प्राकृतिक आपदाओं, आपातकालीन परिस्थितियों और दूर दराज के इलाकों में रेडियो सूचना का सबसे विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों तकनीक बदल सकती है, लेकिन एक सच्ची और अपनापन भरी आवाज़ की अहमियत कभी कम नहीं हो सकती है। रेडियो सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि यादों का खजाना, भावनाओं का पुल और लोगों के दिलों को जोड़ने वाला माध्यम है। तो आइए इस अनमोल माध्यम का सम्मान करें हम और अपनी व्यस्त जिंदगी में कुछ पल रेडियो के नाम भी निकालें। हो सकता है कोई पुराना गीत, कोई प्रेरणादायक विचार या किसी आवाज़ आपके दिल को सुकून पहुंचाए, आपके दिन को खूबसूरत बना जाए। तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम से अब हम लेते हैं इजाज़त। कल अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है नारीलोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं श्री पार्वती के।

0: महनू सरीना का प्यार भरा नमस्कार। महनू कहते हैं, नारी शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि नारी शक्ति राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला है। जिस समाज में महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और अवसर मिलते हैं, वह समाज तेजी से प्रगति करता है। नारी केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि वह समाज और देश की प्रगति में भी समान रूप से योगदान देती है। मैंने एक महिला माँ, बहन, बेटी, पत्नी और शिक्षिका जैसे अनेक रूपों में जीवन को दिशा देती है। एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित और संस्कारी बनाती है। इसी कारण कहा जाता है कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही है। शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, सेना, राजनीति, व्यापार और अंतरिक्ष तक हर जगह महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। बात करें कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम रोशन किया। मैरी कॉम ने खेल जगत में अद्भुत सफलता हासिल की और श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश का नेतृत्व किया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का आर्थिक योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। महनो, आज महिलाएं नौकरी व्यवसाय के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं खेती, हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूह के जरिए आत्मनिर्भर बन रही है। इससे परिवार की आय बढ़ती है और देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। हालांकि आज भी कई जगहों महिलाओं को भेदभाव, असमानता और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बाल विवाह, शिक्षा की कमी और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएँ उनकी प्रगति में रुकावट होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए बहनों, समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा के अवसर मिलने होंगे। यह कहना बिल्कुल सही है कि नारी शक्ति ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी देश मजबूत और सशक्त होगा। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए और एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां नारी और पुरुष दोनों समान रूप से राष्ट्र निर्माण में भाग ले। मैंने कहा भी गया है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां राष्ट्र महान होता है। तो बहनों, अपनी इस चर्चा को अब देती हूँ विराम और सुनते हैं कुछ और भी जरूरी बातें।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख

0: घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बहनों, पता है आपको, आज है शुक्रवार और आज के दिन हम सुनते हैं कार्यक्रम बहनों की पसंद, जिसमें आप बहनों की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्मी नगमे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं कार्यक्रम बहनों की पसंद। पहला गीत सुनने वाली बहनों के नाम है वीरपुर से राधा रानी, नूतन सोनी, हरियो से ममता, सुनीता, नीता और लक्ष्मी, जीछो भागलपुर से नताशा, महिमा, सपना और सीमा। आप सबों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दिल का क्या कसूर का ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और कुमार सानू की, गाने के बोल हैं मिलने की तुम कोशिश करना।

कार्यक्रम का दूसरा गीत है फिल्म दिल से। गाने के बोल हैं मुझे नींद ना आए, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। इस गीत को पसंद करने वाली बहनों के नाम हैं तिलका मांझी भागलपुर से, रूपा अंजलि, बबीता, सविता और डॉली। गोलाघाट नया बाजार भागलपुर से अर्पणा, प्रेरणा, गुंजा और सोना। ततारपुर भागलपुर से नगमा, साहिबा और फातिमा।

फिल्म है हम है राही प्यार की, गाने के बोल हैं मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। इस गीत को गाया है कुमार सानू अलका याग्निक ने। पसंद करने वाली बहनें हैं खलीपाबाग भागलपुर से बबीता रिंकू आलिया पिंकी शुभ्रा तमन्ना और अंकिता, नाथनगर भागलपुर से प्रज्ञा वर्तिका और अनुष्का।

कार्यक्रम का चौथा गीत है फिल्म दामिनी से। गाने के बोल हैं जब से तुमको देखा। इस गीत को गाया है कुमार सानू और साधना सरगम ने। पसंद करने वाली बहनें हैं चंपा नगर भागलपुर से काजल, मीना और रीता, साहिबगंज भागलपुर से रीना, स्वीटी, ममता, अर्पणा और कांति, सराय यूनिवर्सिटी रोड से भागलपुर से नीता, रोशनी और सपना।

बहनों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म बेटा से। गाने के बोल हैं कोयल सी तेरी बोली। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण ने। पसंद करने वाली बहनें हैं सिकंदरपुर भागलपुर से मोनी, गुड्डू, रागनी और पूजा।

तो बहनों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का नारी लोक कार्यक्रम यहीं पूरा होता है। हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और अब हमें दे आज्ञा। नमस्कार।

नारीलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र।

0: महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने लिखते हैं,
1: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
0: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
1: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
1: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
1: जी,
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
1: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
0: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
1: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, यह जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर यह झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है, यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: और निलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटी से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज लोकरंग के कलाकार हैं शिवशंकर कुशवाहा एवं साथी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इनके गाए शिव भजन से।

लोक रंग कार्यक्रम को हम देते हैं थोड़ी देर के लिए विराम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम अपने रांची केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 ओवरले कार्य का किया भूमि पूजन। रांची कांडरा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र के प्रमुख विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति। रीनीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे

0: झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में आज होंगे दो मुकाबले। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 के जमशेदपुर रांची खंड में ओवरले कार्य का भूमि पूजन किया और कहा कि रांची कांडरा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र की प्रमुख सड़कों का काम जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। संजय सेठ ने भरोसा दिलाया कि यह रेलवे लाइन रांची बुंडू तमाड़ सिल्ली चांडिल और कांडरा समेत आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर कार्य शुरू कराया जाएगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के हार के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रखंड प्रभारी के राजू के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि उनके पार्टी पर लगाए जा रहे आरोप तथ्यहीन हैं।
1: हमारे चारों विधायकों ने अपने नेता के निर्देश पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया है। अब बाद बाकी कहां गड़बड़ी है, इसकी जांच कांग्रेस को खुद करनी चाहिए और हमें लगता है कांग्रेस के प्रभारी आत्ममंथन करें। इनका बयान हताशा का बयान है, अपने गलती को छुपाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे।
0: इधर राजद के बयान पर JMM के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सभी बिंदुओं पर समीक्षा होगी।
2: क्या कुछ हुआ, समीक्षा हो रही है, सभी बातें छनकर सामने आ जाएंगी, किन परिस्थितियों में किन विधायकों ने वोट नहीं दिया या वोट क्रॉस वोटिंग की। लेकिन कुल मिलाकर जो भी परिणाम आए, पहली बार एक दलित एक हरिजन को राज्यसभा भेजा गया, उसके लिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देता हूँ।
0: 21 जून को होने वाली रीनीट परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रांची रेल मंडल ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए दो परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें टाटीसिल्वे, मधुआ, लोहरदगा, बड़काकाना, टोरी और लातेहार सहित प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी। इसके अलावा स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल ने भी री नीट अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 21 जून को राउरकेला और टाटा नगर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेन संख्या 68044 राउरकेला से सुबह 5:10 पर रवाना होगी और सुबह 9:20 पर टाटा नगर पहुंचेगी। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का ठहराव राउरकेला और टाटा नगर के बीच पड़ने वाले सभी स्टेशनों और हॉल्टों पर दिया जाएगा। 21 जून को रांची के 21 केंद्रों समेत राज्य के अलग अलग शहरों में री नीट परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पिछली बार हुई घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और परीक्षार्थियों को कई लेयर की जांच से गुजरना होगा, जिसके लिए रांची जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा विशेष टीमें गठित की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत मिशन परिवार विकास अभियान 2026 के प्रथम चरण का राज्यव्यापी शुभारंभ किया गया, जिसके तहत सभी जिलों में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर विशेष जागरूकता एवं परिवार नियोजन गतिविधियां आयोजित की गई। ANM सहिया और स्वास्थ्य कर्मियों ने योग्य दंपतियों और समुदाय को परिवार नियोजन के महत्व, अस्थायी स्थायी गर्भ निरोधक साधनों और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। धनबाद स्थित IIT-ISM ने अपनी 100 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा में नई उपलब्धि हासिल की है। संस्थान को पहली बार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में स्थान मिला है। वैश्विक रैंकिंग में संस्थान को 701 से 710 बैंड में जगह दी गई है। इस रैंकिंग में भारत के 52 संस्थानों के बीच IIT-ISM धनबाद को 21वां स्थान मिला है, जबकि 13 IIT में इसका स्थान 11वां रहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय

0: विश्व योग दिवस को लेकर पूरे राज्य में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में धनबाद में आज रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ रणधीर वर्मा चौक से हुआ और इसका समापन सिटी सेंटर में किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी अमरेंद्र पाठक ने कहा कि नियमित योग अभ्यास स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
1: यह रन फॉर योगा का कार्यक्रम है जिसमें सुधा के सभी विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी भाग लिए हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ आम जनता को जागृति देने के लिए, यह बताने के लिए कि योग का महत्व कितना हमारे जीवन में है। सिर्फ योग को अपना करके हम निरोग रह सकते हैं बिना दवा का, बिना औषधि का।
0: बोकारो में आदिवासी जमीनों पर कथित कब्जे के मामले को लेकर बोकारो सरना विकास समिति ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। समिति के अध्यक्ष महेश मुंडा ने आरोप लगाया कि भू माफिया आदिवासियों के जमीन का स्वरूप बदलकर उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं।
2: झारखंड राज्य अलग हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में कारों में किस तरह से आदिवासी जमीन की लूट हो रहा है। चितुलिया मौजा अंतर्गत न जाने कितने आदिवासी जमीन को भू माफियाओं ने उसका नेचर चेंज कर पूरा चितुलिया मौजा के जमीन बेच चुके हैं और यहाँ के जो रैयत है वो दर दर भटक रहे हैं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है।
0: झारखंड में मुहर्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में लगभग 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार होमगार्ड जवानों को भी सुरक्षा ड्यूटी में लगाया जाएगा। इसके तहत 5,850 होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचारों के अनुसार सेंसेक्स 790 अंकों की गिरावट के साथ 76,620 पर और निफ्टी 210 अंकों की गिरावट के साथ 23,960 पर था। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। रांची मौसम केंद्र ने झारखंड के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ हिस्सों में अगले 1 से 3 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम बारिश, बादल गर्जन और वज्रपात की संभावना है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड T20 क्रिकेट लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच होगा, वहीं दूसरा मुकाबला छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच होगा। इससे पहले कल धनबाद डायमंड्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 ओवरले कार्य का किया भूमि पूजन। रांची कांडरा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र की प्रमुख विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति। री नीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने की विशेष व्यवस्था। रांची और चक्रधरपुर मंडल चलाएंगे स्पेशल ट्रेनें। स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी होंगे उपलब्ध। IIT ISM धनबाद ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में बनाई जगह। झारखंड के 7 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ मौसम खराब रहने की संभावना। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में आज होंगे 2 मुकाबले। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: सुनो ना, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार से पहले आप सुन रहे थे लोकरंग कार्यक्रम। आज लोकरंग के कलाकार हैं शिवशंकर कुशवाहा एवं साथी। इनके स्वर में अब आपको हम सुनवाते हैं लोक भजन।

शिव शंकर कुशवाहा एवं साथियों के गाय इस निर्गुण के साथ ही संपन्न होता है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है घर आंगन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

घर आंगन की सभी प्यारी बहनों को कमली का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहनें अक्सर अपना ही ध्यान नहीं रख पाती। हमें तो यह फिक्र होती है कि आज क्या बनाना है, आज बच्चों को क्या समझाना है, पढ़ाना है, रसोई घर में क्या संभालना है, किन अनाजों को धूप लगानी है, किन बड़ियों को समेटना है, या माँ बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो रही हैं। ऐसी सारी ही बातें हमें याद रहती है, लेकिन इन सारी बातों में हम अपने तलवों के दर्द को, अपनी कमर की जकड़न को, अपनी रूखी हो रही त्वचा को और अपने झड़ते हुए बालों को बस अनदेखा ही कर देती हैं। हम भूल ही जाती हैं कि हमने आज की भागदौड़ में अपना नाश्ता भी नहीं किया या सबको भोजन कराने के बाद हमारे लिए दही सब्जी कम ही पड़ गई। हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें तो बस यही लगता है कि हमारा घर परिवार बस ये खुशहाल रहे, हमें और चाहिए भी क्या। ठीक है बहनों, यह बात भी ठीक है, हमारा परिवार हमारी प्राथमिकता तो होना ही चाहिए, लेकिन बहनों, अगर हम अपने ही स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं तो क्या हमारी दुनिया खुशहाल रह पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हमारी दुनिया, हमारा परिवार खुशहाल है क्योंकि हम उसकी देखभाल के लिए तत्पर हैं। तो बहनों, हमें सबके साथ साथ खुद की देखभाल करना भी बेहद ज़रूरी है, और हम बहनों के लिए तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम अनेकों शारीरिक समस्याओं से गुजरती हैं। माहवारी, गर्भावस्था, प्रसवावस्था, रजोनिवृत्ति जैसे चक्र में महिलाओं का कई कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अगर पोषण का उचित ख्याल न रखा जाए तो कई जटिलताएं भी हो सकती है, और इसी कारण हमारी कुछ बहनें हमेशा बुझी बुझी रहती हैं और समय से पहले ही उनमें उम्र का असर दिखने लगता है। ऐसे में बहनों, क्यों न हम भी खुद के लिए सचेत हो जाएं, हम भी अपने पोषण का ख्याल रखें। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, मौसमी फल, दूध का सेवन करें जिससे हमारे शरीर में लौह तत्व और अन्य जरूरी खनिज तत्वों की आपूर्ति बनी रहे। हम चुस्त दुरुस्त रहें और स्वस्थ रह के हम अपनी दैनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर सकें। और बहनों, यही ज़रूरी बात हमें अपनी बच्चियों के लिए भी समझनी है। उनके शरीर में खून की कमी न हो और उनके शरीर में हो रहे बदलावों और परेशानियों से वे अवगत हों और समय समय पर उनकी स्वास्थ्य जांच भी होती रहे। बहनों, महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं और धुरी का मजबूत होना परिवार को भी मजबूत बनाए रखता है। पोषण के साथ ही साथ बहनों, उचित व्यायाम का होना भी जरूरी है ताकि शरीर की मांसपेशियों की क्रियाशीलता बनी रहे, रक्त का संचार अच्छा से होता रहे, तभी हमारे शरीर की सक्रियता बनी रह सकेगी। बहनों, व्यायाम या योग महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बहनों, इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं अर्चना कुमारी। आइए बहनों, महिलाओं के लिए योग विषय पर उनके विचारों को सुनते हैं।

महिलाओं के लिए योग। स्वस्थ महिला ही पति, बच्चों एवं घर परिवार की सही ढंग से देखभाल कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि वह स्वयं को सबसे पहले सेहतमंद और स्वस्थ रखने की कोशिश करे, तभी अपने घर को बेहतर बना सकती है। शिव जी का अधनाशर रूप साक्षी है कि सृष्टि के लिए जितना पुरुष जरूरी है उतनी ही स्त्री। शव का यह संतुलन हमें हर दिशा और दृष्टि से बनाना होगा, तभी दुनिया चैन से रह पाएंगी। नारी केवल संतति का निर्माण ही नहीं करती, अपितु उसके

माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था, जीवन मूल्यों की व्यवस्था भी करती हैं। लेकिन यह विराट कार्य तभी संपन्न कर पाएंगे जब वह स्वयं स्वस्थ हो। महिलाओं के लिए योग शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है, खासकर हार्मोन बैलेंस, पीरियड्स, थकान और स्ट्रेस के लिए। रोज के लिए आसन, प्राणायाम, बंद और मुद्रा जो महिलाओं को स्वस्थ जीवन प्रदान कर ऊर्जावान बनाने में सक्षम है। तितली आसन, बैठने की स्थिति में पैरों के तलवे एक साथ सटाकर एड़ियों को यथासंभव शरीर के पास, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर पंजा नीचे, तत्पश्चात घुटनों को ऊपर नीचे तितली के पंख की तरह 20 या अधिक बार करने का प्रयास। इसके करने से पेल्विक एरिया खुलता है, पीरियड्स के दर्द और PCOS में भी मददगार है। भुजंग आसन, पेट के बल लेटकर पैरों को सीधा व लंबा फैलाकर हथेलियों को कंधों के नीचे जमीन पर, माथे को जमीन से छूते हुए धीरे धीरे सिर को व कंधों को जमीन से ऊपर उठाते हुए यथासंभव सर को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास। जब धीरे धीरे पूरी पीठ को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर शरीर को नाभि तक ऊपर उठाने का प्रयास, फिर धीरे धीरे उपरोक्त क्रिया को विपरीत रूप में करते हुए पूर्व स्थिति में वापस एकाग्रता, विशुद्धि चक्र या आज्ञा पर लाना। यह आसन स्त्रियों के प्रजनन संबंधी विकारों को जैसे प्रदर, कष्टप्रद मासिक धर्म और अनियमित मासिक धर्म आदि को कष्ट को दूर करने में सहायक है। अंडाशय और गर्भाशय को भी यह आसन से लाभ पहुंचता है। रीढ़ मजबूत करता है, थायराइड बैलेंस करता है और कमर दर्द को भी कम करता है। सेतुबंध आसन, दोनों घुटनों को मोड़कर कटिप्रदेश को ऊपर उठाकर दोनों हाथों को कोहनी के बल खड़े करके कमर के नीचे टिकाते हुए पैर सीधा, सिर भूमि पर टिका हुआ, यह अभ्यास हार्मोन रेगुलेट करता है, मेनोपॉज के लक्षणों में भी राहत देता है। स्वासन, पीठ के बल लेटकर भुजाएं सिर के बगल में, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई, दोनों पैरों के बीच थोड़ा दूरी, आंखें सहजता से बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़कर जमीन पर सहज श्वास के साथ स्थिर व शांत चेतना, श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक, श्वास प्रश्वास की गिनती अंदर बाहर कुछ मिनटों तक गिनने के बाद यदि मन यहाँ वहाँ भटकने लगे तो उसे वापस गिनती में लगाना। कुछ मिनटों तक अपने श्वास के प्रति जागरूक रहने पर तन मन स्थिर हो जाता है। यह अभ्यास समस्त शारीरिक एवं मानसिक प्रणालियों को स्थिर करके विश्राम देता है। सोने से पूर्व आसनों के पहले या मध्यम व गतिशील अभ्यास के बाद इसका अभ्यास आदर्श माना जाता है। त्रिकोण आसन, खड़े होकर भुजाओं को बगल में जमीन के समांतर फैलाकर शरीर को कमर से इतना झुकाएं कि समकोण बन जाए, धर को घुमाएं और बाएं हाथ से दाएं पैर का स्पर्श कर दृष्टि दाएं हाथ की उंगलियों पर, इसी क्रिया को दूसरी ओर ठहराव। पहली स्थिति में वापस प्रत्येक अवस्था का 5-5 बार अभ्यास, श्वास, भुजाओं और धर को उठाते समय, धर को घुमाते समय श्वास बाहर की ओर रोककर, भुजाओं और धर को झुकाते समय श्वास छोड़ना। निराशा आदि में विशेष रूप से लाभकारी है। कब्ज दूर कर भूख को बढ़ाता है, बढ़ती उम्र की लड़कियों के लिए विशेष लाभदायक है। कमर और साइड फैट कम करता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है। सूर्य नमस्कार भी महिलाओं के लिए बेहतरीन है, जो पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग, वजन कंट्रोल और हार्मोन बैलेंस के एक साथ करता है। सूर्य नमस्कार गतिशील अभ्यास है जो शरीर के

0: सभी जोड़ों व मांसपेशियों को ढीला करने का तथा आंतरिक अंगों की मालिश करने का इतना प्रभावशाली ढंग है कि इसे प्रातः स्नान के बाद एवं अन्य योग विधियों के पूर्व श्रेष्ठ माना गया है। दिन में यदि किसी भी समय आपको थकान अनुभव होता है तो यह अभ्यास के द्वारा अपनी खोई हुई शारीरिक व मानसिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार से संपूर्ण शरीर को आरोग्य, शक्ति एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे शरीर के सभी अंगों प्रत्यंगों में क्रियाशीलता आती है तथा शरीर की समस्त आंतरिक ग्रंथियों के अंतःस्राव की प्रक्रिया का नियमन होता है। सूर्य नमस्कार को 11 से 21 बार यथाशक्ति आवृत्ति किया जा सकता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम 5 मिनट रोज, हार्मोन बैलेंस, एंजाइटी कम, बीपी कंट्रोल, कपालभाति 2 मिनट, पेट कम करने और मेटाबॉलिज्म तेज करने में बेस्ट। भामरी प्राणायाम, आँख कान बंद कर करके भवरे जैसी आवाज, दिमाग तुरंत शांत और माइग्रेन में मदद। मूल बंद, ध्यान के किसी भी ऐसे आसन में बैठना जिसमें घुटने जमीन को छूते रहे, सिद्धासन या करके इसके लिए सर्वोत्तम है। इन आसनों में एड़ी का दबाव मूलाधार प्रदेश पर पड़ता है जिससे बंद के उत्तम अभ्यास में सहायता मिलती है। हथेलियाँ घुटनों पर, नेत्र बंद, शरीर स्थिर, दोनों दीर्घ पूरक और अंतरक कुंभक लगाकर जालंधर बंद लगाना। तत्पश्चात मूलाधार प्रदेश के स्नायुओं में अंकुचन क्रिया करते हुए इन्हें ऊपर की ओर खींचना। इस अवस्था में श्वास रोककर अस्थिर रहने का प्रयास। तत्पश्चात स्नायुओं को ढीला करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में, तब धीरे धीरे रेचक क्रिया के उपरांत बाह्य कुंभ लगाते हुए भी अभ्यास करना। एकाग्रता मूलाधार चक्र पर, इस क्रिया में प्रजनन एवं उत्सर्जन अंगों के मध्य मूलाधार प्रदेश का अंकुचन तथा ऊपर की ओर खिंचाव होता है। परिणामतः अपान वायु नाभि के निम्न प्रदेश में स्थित प्राण की शक्ति का बहाव ऊपर होता है और उसका योग प्राण वायु सौर यंत्र एवं छाती के मूल के मध्य में स्थित होता है। फलतः शक्ति उत्पन्न होती है, कटिबंध प्रदेश की नाड़ियों को उत्तेजित करता है तथा इससे संबंधित प्रजनन तथा उत्सर्जक अंगों को व्यवस्थित करता है। गुदादार की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है तथा आंतों के वक्र प्रदेशों को उत्प्रेरित करता है। इस प्रकार प्रभावपूर्ण ढंग से अपचन दूर करता है, बवासीर के निवारण में सहायक है। अश्विनी मुद्रा, ध्यान के किसी भी आसन में बैठकर शरीर को स्थिर करते हुए नेत्रों को बंद कर स्वाभाविक श्वास की गति गुदा द्वार की मांसपेशियों को कुछ सेकंड के लिए संकुचित कर प्रसारित करना। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप अश्व की तरह गुदा के स्नायुओं पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। इस अभ्यास की सिद्धि पर व्यक्ति अपनी प्राण के हास को रोकने में समर्थ होता है। यह शक्ति का संचय होता है बवासीर, गुदा या गर्भाशय के बाहरगत होने की दशा में। इसका अभ्यास लाभप्रद है, आंतों के वक्रों की क्रियाशील बनाते हुए अपचयन दूर करता है। पीरियड्स के पहले 2-3 दिन हैवी आसन, उल्टे आसन और पेट पर दबाव वाले आसन अवॉइड करें। प्रेगनेंसी में भुजंग आसन, धनुरासन मना है। कोई आसन करने में दर्द या चक्कर आए तो रुक जाना चाहिए, पहले डॉक्टर से पूछ ले। सही लगता है खासकर थायराइड, बीपी या बैक पेन की दिक्कत हो तब। जिम तथा व्यायाम शालाओं में प्रचलित शारीरिक व्यायाम से केवल मांसपेशियां विकसित होती हैं, जबकि आसनों के अभ्यास से शरीर के समस्त जोड़ मांसपेशियों की क्षमता, शक्ति तथा लचीलेपन में वृद्धि होती है। श्वास प्रश्वास को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करने से संपूर्ण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं रक्त संचार में वृद्धि होती है।
1: बहुत ही उपयोगी बातें हमने इस वार्ता के जरिए पाई बहनों। ये जानकारियां दे रही थी बहन अर्चना कुमारी। निश्चित रूप से हमारी बहनें अगर इन योगों को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगी तो उनमें सुखद शारीरिक और मानसिक बदलाव परिलक्षित होंगे। बहनों, ऊर्जा हमारे जीवन की जरूरत है। ऊर्जा की बचत हम कैसे करें, इस संदर्भ में एक पूर्व प्रसारित वार्ता के जरिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
2: सूखे पत्तों में आग लग गई।
3: इस पृथ्वी पर आया तो ऊर्जा से उसका परिचय नहीं था। वो जंगलों में रहता था, जंगलों में घूमता था, पेड़ पौधों से भोजन इकट्ठा कर और जानवरों को मार कर अपनी भूख मिटाता था और प्रजनन करता था। जब ठंड लगती थी तो सूर्य की तपन उसे सुकून और आराम देती थी। ये था ऊर्जा से उसका प्रथम साक्षात्कार। और फिर एक दिन हथियार बनाने के लिए उसने चकमकी पत्थर क्या ठोका, उससे निकली चिंगारी और उस चिंगारी से आसपास के सूखे पत्तों में आग लग गई। वो डरा, भागा, हो सकता है जला भी हो। और फिर एक दिन आया जब आग उसके काबू में था, उसकी मर्जी का गुलाम। ये था मानव द्वारा ऊर्जा का प्रथम इस्तेमाल। ऊर्जा अर्थात शक्ति, शक्ति अर्थात कार्य का स्रोत। धीरे धीरे मानव सभ्य होता गया और ऊर्जा के विभिन्न रूपों की चाबी उसके हाथ में आती गई। ऊर्जा का इस्तेमाल कर मानव शक्तिमान और फिर महाशक्तिमान बन गया। मानव आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहनों, मानव सबसे बुद्धिमान जीव है और शायद सबसे मूर्ख भी। जी हाँ, मूर्ख। क्या आपने किसी जानवर को जानबूझकर स्वयं को क्षति पहुंचाते हुए देखा है? नहीं ना। मगर मनुष्य ने ऐसा किया और आज भी कर रहा है। उसने बिना सोचे समझे एक विशाल जनसंख्या खड़ी कर ली है और उस विस्फोटक जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए और कुछ अपने लोभ के कारण और बहुत कुछ अपने उपेक्षापूर्ण रवैया के कारण ऊर्जा के स्रोतों का इतना दोहन किया कि स्वयं को एक ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां भविष्य में मनुष्य को ऊर्जा कहां से मिलेगी, ये प्रश्न सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ा है। बहनों, क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि धरती पर ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो जाने की स्थिति में आज का मानव आदि मानव की तरह जीवन जी सकता है? नहीं ना, ये असंभव है। फिर उपाय? अभी भी समय है। अगर हम भविष्य की पीढ़ियों का जीवन कठिन, अति कठिन नहीं बनाना चाहते तो दो स्तरों पर काम करना होगा। पहला, ऊर्जा के मौजूदा स्रोतों का न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना और दूसरा, ऊर्जा के नए स्रोतों का खोज करना। बहनों, ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक पारंपरिक और दूसरा अपारंपरिक। अपारंपरिक स्रोत कभी भी इस्तेमाल करने से खत्म नहीं होते, जैसे सूर्य, पानी, हवा, बायोगैस, परमाणु इत्यादि से मिलने वाली ऊर्जा। दूसरे प्रकार के स्रोत जो पारंपरिक हैं, उनका एक सीमित भंडार धरती पर मौजूद है जिनका एक दिन समाप्त होना तय है। जितना ज़्यादा हम उनका इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी ये खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से मिलने वाली ऊर्जा। बहनों, हर देश में एक सरकार होता है और सरकार के अपने दायित्व और कर्तव्य होते हैं, लेकिन किसी भी देश की सरकार देश की जनता के दायित्व बोध और कर्तव्य बोध के बिना सफल नहीं हो सकती। ऊर्जा की समस्या एक वैश्विक समस्या है, अतः हर देश के हर व्यक्ति का सहयोग इस समस्या के निदान के लिए जरूरी है। एक बात याद रखिए, किसी भी समस्या का समाधान असंभव नहीं है। जरूरत है तो बस आंतरिक इच्छा शक्ति और कर्तव्य बोध का। बहनों, हम महिलाओं का मिलित सहयोग एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आइए आज हम ऊर्जा के बचत में अपनी भूमिका की चर्चा करें। सबसे पहले बात करते हैं रसोई घर की। रसोई घर एक ऐसी जगह है जहां महिलाएं खुशी खुशी दिन का एक बड़ा भाग बिताती हैं। रसोई घर में खाना पकाने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। कुछ महिलाएं खाना पकाने के गैस का इस्तेमाल करती हैं तो कुछ कोयले और लकड़ी का। कैसा भी ईंधन हम इस्तेमाल करें, कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हम बड़ी मात्रा में ऊर्जा बचा सकते हैं। बहनों, सबसे पहले तो आप खाना पकाना शुरू करने से पहले सारी चीज़ें तैयार कर लें और सारा सामान चूल्हे के पास रख लें, ताकि एक खाना उतार कर दूसरी चढ़ाने के बीच आपका ईंधन बर्बाद न हो। गैस का चूल्हा तो आप बंद कर सकती हैं, लेकिन कोयले और लकड़ी के चूल्हे में ये गुंजाइश नहीं है। दाल और चावल जैसी चीज़ें आप पकाने के पहले थोड़ी देर पानी में फूलने के लिए रख दें। ऐसा करने से ये चीज़ें पकने में कम समय लेती हैं और आपका ईंधन बचता है। खाना हमेशा ढककर पकाएं, जहाँ तक संभव हो कुकर का इस्तेमाल करें। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि खाने में एक उबाल आ जाने के बाद गैस कम कर दें, क्योंकि पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और उबाल आ जाने के बाद आप आँच कितना भी तेज रखें, पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा तब तक जब तक कि पूरा पानी भाप बनकर उड़ नहीं जाता। अतः उबाल आ जाने के बाद आँच तेज रखना केवल ईंधन की बर्बादी है। बहनों, महिलाएं परिवार की धुरी है। अपने परिवार के सदस्यों में कुछ अच्छी आदतें डालकर आप ऊर्जा की बड़ी बचत कर सकेंगे। घर में LED बल्ब का इस्तेमाल करें, इनमें बिजली कम खर्च होती है। प्रधानमंत्री के उज्ज्वला योजना में ये कम कीमत पर उपलब्ध है। जब जरूरत न हो तो बल्ब और बिजली के अन्य उपकरण जैसे TV, पंखे इत्यादि बंद रहने चाहिए। पानी के बर्बादी में भी ऊर्जा की बड़ी बर्बादी होती है। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पानी का इस्तेमाल करें। बेवजह नल खुला न छोड़ें। कपड़े धोते समय सावधान रहने की ज़रूरत है। हम कपड़े धोते रहते हैं और बाल्टी भरकर पानी उफनता रहता है। ब्रश करते समय भी नल खुला न छोड़ें। रसोई घर से निकलने वाला पानी हम नाली बनाकर अपनी बाड़ी में ले जा सकते हैं। इससे बाड़ी में सिंचाई के लिए हमें कम पानी की ज़रूरत होगी। बहनों, अपने आसपास या कभी राह चलते एक दृश्य दिख जाता है जो बहुत ही दुख पहुंचाता है। वो है पानी की टंकी का भरकर पानी गिरते रहना। ये हमारी अन्य मनस्कता और उपेक्षापूर्ण रवैया का परिणाम है। बहनों, अगर आपके घर में बोरिंग है और पानी मोटर से टंकी में पहुंचता है तो इस बात पर ध्यान देना अत्यंत ज़रूरी है। मोटर चलाकर सतर्क रहें और टंकी भरते ही मोटर बंद कर दें। इस तरह आप बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी रोकेंगी। बहनों, पानी की बचत कर और इसकी बर्बादी रोक कर हम बड़ी मात्रा में ऊर्जा बचा सकते हैं, क्योंकि पानी की उपलब्धता ऊर्जा के इस्तेमाल से होता है। जाड़े के दिनों में हमें नहाने और अन्य कामों के लिए गर्म पानी की ज़रूरत होती है। बहनों, अगर हम सुबह सुबह बाल्टियों में पानी भरकर धूप में रख दें तो 2-3 घंटों में ये पानी सुषम गर्म हो जाता है। इस तरह हम गर्म पानी के लिए बिजली या अन्य ईंधन खर्च करने से बच जाएंगे। अगर आपके पास पशुधन है तो अपने घर में एक बायोगैस प्लांट बनवा लेना बहुत ही बुद्धिमानी का काम होगा। इससे पैदा होने वाले गैस से आप रसोई घर में खाना भी बना सकती हैं और अपने घर को भी रोशन कर सकती हैं। इसके अलावा बायोगैस प्लांट से आपको अपने खेतों के लिए अति उत्तम खाद भी मिलेगा। बायोगैस की तरह ही एक और ऊर्जा का आप बखूबी इस्तेमाल कर सकती हैं, यह है सूर्य की ऊर्जा। सोलर लैंप का इस्तेमाल आप अपने घर में रोशनी के लिए कर सकती हैं। इसके अलावा आप अपने घर के छत पर या किसी खुले जगह पर सोलर पैनल लगवा कर भरपूर ऊर्जा पा सकती हैं, वो भी मुफ्त में। बहनों, इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर आप एक बड़ी क्रांति ला सकती हैं। मानव के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। ज़रूरत है थोड़ी सी सजगता, तत्परता और इच्छा शक्ति की। क्या आप चाहेंगी आपके बच्चों के पोते पोतियाँ ऊर्जा के कठिन संकट का सामना करें? उनकी पढ़ाई लिखाई एवं अन्य क्रियाकलाप ऊर्जा की कमी के कारण बाधित हो? शायद नहीं। आपने देखा होगा लातूर एवं देश के कुछ अन्य भागों में कठिन जल संकट के कारण छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल न जाकर जल संचय करने को बाध्य हो गए थे। क्या आप चाहेंगी कि आपके परिवार के भावी बच्चों का जीवन ऊर्जा संकट के कारण कठिन हो जाए? अगर नहीं तो फिर हमें चेतना होगा और कमर कसकर अपनी भूमिका निभानी होगी। अंत में कहना चाहूंगी, अगर हमने अपनी आदत न सुधारी तो भविष्य में ऊर्जा के लिए होगी भयंकर मारामारी।
1: बहुत ही अच्छी बातें इस वार्ता के जरिए हमने जानी बहनों, और ऊर्जा बचाना आज की समझदारी है बहनों। आइए अब सुनते हैं एक लोक भजन।

और इसी के साथ बहनों, हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से ढेर सारी बातों और जानकारियों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दें, सबों को कमली का नमस्कार।

घर आंगन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से।

अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुने। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया से जुड़े कार्यों की समीक्षा की।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, नवाचार, तकनीक और उद्यमिता के माध्यम से नए भारत की मजबूत नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाकर बिहार विकसित राज्य के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर रेल मंत्री अब से कुछ देर बाद छपरा से आनंद विहार के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे बिहार सहित पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की 157 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। पटना स्मार्ट सिटी के कुल 9 प्रोजेक्ट्स को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पटना के चर्चित परियोजनाओं में मीठापुर में 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में तैयार कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा पटना में गिग वर्कर्स के लिए 2 एसी लाउंज का भी उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने दीघा से सभ्यता द्वार तक विकसित रिवर फ्रंट परियोजना का भी उद्घाटन किया। यहां जिगजैग पार्क बनाया गया है। नगर विकास विभाग की यह परियोजनाएं पटना शहर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र कुमार प्रसाद यादव तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने लगभग 1 दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी MBR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 गुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क भी महंगे होंगे। नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष MBR में स्वतः 5% की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना के बामेती सभागार में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम उत्पादक किसान, उद्यान विशेषज्ञ और आम विक्रेता मौजूद रहे। महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां किसानों और आम प्रेमियों को अलग अलग किस्मों के आमों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि बिहार में आम की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं राज्य के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर उष्ण लहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अपनी मेहमत से इलाकाई खबरें सुनिए। सेंट्रल रेल इत्तलात व नशरियात और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर अश्विनी वैष्णव ने पटना वाके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से मुंसलिक कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला सरवार चौधरी भी मौजूद थे। जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में डिजिटल इंडिया, नवाचार, तकनीक और सरमायाकारी के तवस्सुत से नए भारत की मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाकर बिहार तरक्की याफ्ता रियासत की तामीर की सम्त में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इधर वजीर रेल अब से कुछ देर बाद छपरा से आनंद विहार के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे बिहार समेत पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना में महकमा शहरी तरक्कियात और रहाइश के 157 मंसूबों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। पटना स्मार्ट सिटी के कुल 9 प्रोजेक्टों को प्रोग्राम में शामिल किया गया है। पटना के मारूफ प्रोजेक्टों में मीठापुर में 26,000 मुरबा फीट हल्का में तैयार कॉमन सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। इसके अलावा पटना में गिग वर्कर्स के लिए 2 एसी लॉन्च का भी इफ्तिताह हुआ है। वजीर आला ने दीघा से सभ्यता द्वार तक तरक्की पजीर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। यहां जिग जैग पार्क बनाया गया है। महकमा शहरी तरक्कियात के ये प्रोजेक्ट पटना शहर को नई शक्ल देने की सम्त में अहम कदम माना जा रहा है। इस मौके पर नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव और महकमा शहरी तरक्कियात और रहायश के वजीर नीतीश मिश्रा भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने एक दहाई के बाद देही और शहरी इलाकों में कम अज़ कम कीमत रजिस्ट्री MVR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। महकमा रजिस्ट्रेशन के जरिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक देही इलाकों में ये शरह औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी इलाकों में लगभग दोगुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से ज़मीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प फीस भी महंगी होगी। नए निज़ाम के तहत अब हर साल MVR में खुद ही 5% का इजाफा होगा और हर 3 साल पर इसका जायज़ा लिया जाएगा। महकमा के वजीर मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से ज़मीन एक्वायर के मामलों में किसानों को ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ख़वातीन के नाम इमलाक रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इतवार को होने वाले कौमी अहलियती नीट दाखिला इम्तहान ग्रेजुएट नीट UG के दोबारा इम्तहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सरकारी व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने वाजे किया है कि सभी सरकारी व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ इसके तस्दीक शुदा नंबर 9178279802087 के तवस्सुत से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी मैसेज पर भरोसा करने से पहले नीले तस्दीक शुदा निशान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम की जांच करने। वजीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा ने पटना के बामिती ऑडिटोरियम में 3 रोज़ा आम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कसीर तादाद में आम पैदा करने वाले किसान, बागीचा के माहरीन और आम ताजिर मौजूद थे। प्रोग्राम में आम की मुख्तलिफ किस्मों की नुमाइश की गई है, जहां किसानों और आम के शायकीन को अलग अलग किस्मों के आमों की मालूमात दी जा रही है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब सिन्हा ने कहा कि बिहार में आम की काश्तकारी को फ़रोग देने के लिए रियासती हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है। रियासत में आइंदा 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात बने हुए हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाल मशरक और जनूब मशरक में वाक़ अजला के कुछ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। ریاست کے جنوبی حصوں میں کئی

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:15 होने वाले हैं। आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा समापन। मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर

0: पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकार और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार 2रे और 3रे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
5: Our position on Indus Water Treaty is well known.
6: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति नुसरत फतेह अली खान एवं साथियों के स्वर में। फिल्म है दिल लगी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर
0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन
2: रानी है बक्का देवी। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: मैं पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
7: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
6: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
7: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
6: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
8: आप सुन रहे हैं चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले एवं कुमार

सानों के युगलसर में। गीत सईद राही के हैं, संगीतकार हैं नदीम श्रवण और फिल्म है जान तेरे नाम।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म से। गायक कलाकार है एसपी बाला सुब्रमण्यम। गीत समीर के हैं, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है क्षेत्रपट से कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। हम पुनः उपस्थित होंगे शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम के साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप एवं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: इंतजार, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का, किसी बात का हो या फिर किसी घटना के होने का इंतजार हो, इंतजार थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो चलिए इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं हमारी और आपकी बातचीत से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज उठी है और हम बात करते हैं आज कॉल करने वाली हमारी पहली सहेली से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बताइए कौन बात कर रही है इस समय हमसे?
1: मैं शबाना बोल रही
0: हूँ। शबाना जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: उमरी खदाना।
0: उमरी खदाना
1: जी।
0: अच्छा बताइए क्या करती हैं आप?
1: एक टाइम तो मैं कुछ नहीं कर रही, दुकान पे बैठी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर रखी।
0: तो ये आपकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की?
1: हाँ जी, अपनी खुद की है।
0: अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या क्या काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर?
1: मैं तो सिर्फ बेचती हूँ, जैसे सामान होते हैं LED, डिस्क, पंखे वगैरह, लाइट का टोटल सामान, और सुधार से भी हैं, रिपेयरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड आके, हम लेकर रख लेते हैं।
0: अच्छा, तो आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं?
1: जी हाँ।
0: तो जब आप दुकान संभालती हैं तो घर पे बच्चे भी अकेले आराम से रह लेते होंगे क्योंकि इतने समझदार हो गए?
1: हाँ, काफी समझदार है। बड़ा लड़का 16 साल का हो चुका है, 15 में लग चुका है, और छोटा 12 साल में लग चुका है, 12 का हो गया, 13 में लग चुका है।
0: शबाना जी, आप दुकान पर जब संभालती हैं तो उसी वक्त रेडियो भी सुनती हैं?
1: जी हाँ, रेडियो सुन लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, टीवी में रेडियो चला लेते हैं।
0: तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओम शांति ओम फिल्म का दीवानगी दीवानगी का मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: सहेली बताइए, कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: हम नीता मिश्रा बात कर रहे हैं आपसे।
0: नीता मिश्रा?
1: जी आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ नीता जी। मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: ये हमने लगाया यूपी से, लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से आप बात कर रही हैं। बताइए लखीमपुर खीरी का मौसम इस समय कैसा है?
1: यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है।
0: अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है?
1: नहीं, बहुत बूंदाबांदी हुई थी कल रिजर्व बस।
0: तो जब थोड़ी बूंदाबांदी होती है तो गर्मी को और बढ़ा देती है, क्योंकि
1: हाँ,
0: उमस
1: गर्मी
0: बहुत हो
1: बहुत
0: जाती
1: ज्यादा,
0: है।
1: गर्मी बहुत ज्यादा।
0: तो बताइए आपके शौक क्या क्या हैं नीता जी?
1: हमारे शौक हैं गाने सुनना, किताबें पढ़ना।
0: किस तरह की किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: फिलहाल तो नॉवल अच्छे लगते हैं, जैसे गोदान है, गवन है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है, मैंने लगभग 8-10 तो नॉवल पढ़े ही पढ़े हैं। और बाकी किताबें बढ़िया लगती हैं पढ़ना, जैसे ये लड़कियों वाली आती, मेरी सहेली है।
0: जो महिला पत्रिकाएं आती हैं वो आप पढ़ना
1: जी जी
0: पसंद करती हैं। बाकी आप उपन्यास
1: हाँ
0: बहुत सारे, जैसे आपने बताया मुंशी
1: हाँ
0: प्रेमचंद जी के अधिकतर उपन्यास आपने पढ़े हैं, बहुत अच्छा साहित्य आप
1: जी
0: पढ़ती हैं
1: जी
0: जिसमें हमें
1: हाँ पढ़ना
0: बहुत
1: मतलब लगभग तो सभी कुछ छोटे थे तो कॉमिक्स में बहुत पढ़ते थे, कॉमिक्स का जमाना तो गया, लेकिन अब ये किताबें बढ़िया लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब बचपन में हम थे
1: जी
0: तो कॉमिक्स का जमाना था और वो भी आपने बहुत पढ़ी हैं। आप गाने सुनने की भी शौकीन हैं, तो किस तरह का संगीत पसंद है
1: हाँ,
0: आपको? आज के जमाने के, जो आज के दौर
1: गाने
0: के गीत हैं वो पसंद करती
1: आजकल
0: हैं?
1: के भी पसंद है, लेकिन पुराने गाने, ओल्ड गोल्ड कहा जाता है, तो पुराने गाने ज्यादा पसंद है, खास तौर से लता जी से।
0: तो उस सुनहरे दौर का लता जी का गाना आपकी पसंद का अगर हम पूछें तो वो कौन सा गीत है?
1: बहुत सारे हैं,
0: आज
1: अमर
0: जो गीत
1: किया
0: आप सुनना
1: था,
0: चाहती हैं वो बताइए।
1: मुझे सुनना है मैं हूँ खुश रंगीना, हिना फिल्म का गाना।
0: आपको सुनवाते हैं हिना फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोरात।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला अहिल्या नगर से तालुका पारनेर है, वहां से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बड़ा बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए है अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं तो कौन से कार्य

वक्त जैसे ठहर गया है। हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारेख,
0: मधुर पारिक। मधुर पारिक, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी
1: मतलब
0: बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
1: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहां जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है, जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियां हैं,
0: जी।
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है। दरअसल ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, उस वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना
1: जी
0: लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जब कदम रखते हैं, वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहां उन बच्चों को
1: जी
0: किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमें माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको। क्या
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, हम किनसे बात कर रहे हैं इस समय? कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम। जी
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: मैडम।
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी
1: हाँ
0: डाला जाता है खाने के अलावा, जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर फिर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है? वहां बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है।
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि
1: हाँ
0: धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा बिगा, दिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह कि सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है, सुनवाते हैं आपको ये गीत। दम दम

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं झांसी से बोल रही हूँ, रचना
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: जी।
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: बस मैं घर पे ही रहती हूँ
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है,
1: जी मैम जी।
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: मैम मेरी तो 20 साल हो गए मेरी शादी को
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी।
1: जी। मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए तो इधर ही रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे सागर फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।
2: बहुत

0: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता, अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
1: अभी? हाँ छोड़ा है मैंने, अभी मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके, तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
1: हाँ हाँ जी।
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है
1: जी 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं। अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं वैसे तो जरूरत नहीं, उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है,

0: वो तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। वो अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज।
1: बिल्कुल सही बात है, ये ऐसी
0: हाँ
1: उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है, तो बच्चों
0: हाँ
1: में जो संस्कार पड़ते हैं, खास तौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
0: हाँ पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना, तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
1: इसके
0: अभी
1: अलावा और
0: गिटार सीखने लगी हूँ।
1: अच्छा, गिटार आप सीख रही हैं?
0: जी अभी स्टार्ट किया है। हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
1: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ना ही अपने
0: हाँ
1: आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
0: सीखी नहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इश्यू है, मतलब बहुत ज्यादा इश्यू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ। डेयरिंग करके जाती हूँ मैं, कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
1: रेडियो आप सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
0: हेलो सहेली, वो तो सुनती हूँ, और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
1: निकिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
1: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक अहरवार बात कर रही
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से
1: हूँ।
0: कॉल लगाया? अपने शहर का नाम बताइए।
1: बुगावड़ी।
0: बुगावड़ी।
1: यस मैम।
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वहीं तहसील खुरई पे साइड है बुगावड़ी।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस
0: तो आपका जो गांव है वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यही तो है पथरिया, तो वहीं पर पढ़ती हैं। साइकिल
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर आने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने
1: नहीं
0: की?
1: मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
1: या मैम,
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और 1 भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं।
1: हाँ मैम।
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: मैम अभी 1 साल पहले।
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं।
1: यस मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज की फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क तू का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवान के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और
0: आपने
1: साथ में जानकारियां भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते
0: सकती हैं ये बताइए।
1: मैम। मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली?
1: मैम रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम, मेरा गांव के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो शिवगढ़ है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ
0: आपने
1: पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
0: और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैम मुझे तो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना और मतलब सॉन्ग को गाना, मैम मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेली
1: हेलो सुनिए,
0: अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहानी है।
0: प्रतिभा रहाणे जी, आप कहाँ रहती हैं, किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं हूँ राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योग आश्रम नाम से, पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहां पे आप एज वॉलेंटियर आती हैं,
1: हाँ
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप
1: हाँ
0: कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: हाँ वहाँ पे फ्री योग सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है, और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह
1: और
0: की सेवाएं यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ, और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है,
1: हाँ
0: तो हमारी सखियों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में ये क्यों जरूरी है?
1: तो योगा हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है,
0: जी।
1: जैसे हेल्थ के लिए तो फिजिकल फिटनेस के लिए तो अच्छा है ही, पर अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ जिस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
1: हाँ तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग काम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है, और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, तो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते तो अंदर से खुश होते हैं।
0: तो योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है,
1: हाँ
0: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और
1: हाँ
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में ये क्या हो गया ये सॉन्ग सुनना है।
0: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद स्वामी का गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, एक और नंबर है 28687-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 02। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-4662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनु पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल हेलो सहेली।

0: जाने माने पेंटर अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसती खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई है।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एक समस्या है क्या? ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बात करते हैं और उससे आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती हूं, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहां, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल पड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूं।

कांपती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन मिल गया तुमको। अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है, शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला। क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ में कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा।

गाईं, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा का फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को? कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

0: मनिया।
1: अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसके प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभव चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना भी।
2: निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन। निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन। लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बाघड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी।

सुपर फास्ट बड़ी छोरी जबर जात बड़ी बाधा इसने जूते का जो फीता फिर गीता बनी चीता इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से ये धाड़ से पछाड़ गई जो भी था उखाड़ ना उखाड़ गई। जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी तने चारों खाने चित कर देगी तने चारों खाने चित कर देगी।

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी।

युवानी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आशीष का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारियाँ और साथ ही साथ आप सभी के लिए ना बहुत ही प्यारे प्यारे गाने। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, इस खूबसूरत से गाने के बाद अब आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: दस लाख की लॉटरी मुझे,
6: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे युवाणी कार्यक्रम में। अब आइए आपको हम ले चलते हैं साहित्य में, युवाओं में साहित्य की चेतना पर एक चर्चा की ओर।

क्षमा कीजिएगा श्रोताओं, आज का युवानी कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आपको एक विशेष प्रसारण के लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र की ओर।

0: योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लानरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: या द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड ऑलरेडी इज इन विज्ञान भवन एंड इज इन अ सेपरेट हॉल वेयर इज हैविंग अ टॉक अ डिस्कशन विद द बेनिफिशियरीज हु आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड टुडे फ्रॉम दिस this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in, say, in a short while, he'll be entering the plenary hall, wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses. And of course, they are flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they are numbering about, about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs. And it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज़ एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ। एंड टुडे इनफैक्ट अराउंड 15 लाख beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2400 crores only for today. And then of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार

0: साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे.
1: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क. व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is a universal account number.
0: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डाले तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
1: पीपल विल फील सिक्योर. ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग बट let the, this our prime minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto. No rozgar ya karobar साथ है भारत सरकार.
0: जी और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है. जी
1: या एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli bar naukri mili
0: hai.
1: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer DBT through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one, after another 6 months, so after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit.

0: Profit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल, सभी को फायदा है. Yes. बिल्कुल फायदा है. और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा. और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं. और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी. और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
0: Yes. है ना? See, and then one more thing. See, the Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is a National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs.
1: Hmm.
0: It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you're reasonable, you're well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा. बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं. नहीं, आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं. और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
0: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the Prime Ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years.
1: Hmm.
0: But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years.
1: Hmm.
0: Benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 saal.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है. रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
0: एटमॉस्फेयर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज़ सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
0: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment, none of them are left without a job.

0: because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं ना? लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
0: yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got their employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रू, तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे. और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
0: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, and they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker. They are also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands. And of course, it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को.
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now, and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: 4 श्रम संहिताएं लागू. मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली. और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्रीति, इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, यू नो, जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So we are going digital in every field. So we should be proud of our country and The people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think. Almost 700 people are seated over here. Right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
0: That's why it's full. Not a single seat is empty. People are, they're all job seekers. And most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it'll come to the phone that they've got their letter.
1: An amount will be transferred.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं?
0: Yeah.
1: आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a Universal Account Number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए. और
0: yes,
1: ये बहुत महत्वपूर्ण है.
0: yeah,
1: जी
0: yeah.
1: इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे. और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी. सो एंड आई एम टेलिंग इट्स रियली गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ दीस पीपल ऑल दीस बेनिफिशियरीज हु आर सिटिंग ओवर हियर इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन एंड दे विल बी ड्रीमिंग यू नो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम अप. And I think they are all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button.
1: Magic button.
0: Yeah, that is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of our Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं चार वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता दो वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board. On the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है नहीं
0: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know, and you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and he will see that you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So you know, that's how he encourages. And the students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं है ना तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उससे जुड़ जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से
0: Yes, and one more thing, you know, when he talks to when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable for not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and in mingles with them and what a beautiful atmosphere you know so all these things he has got all these qualities you know to mingle with people and take your he listens to your problems that is the greatest thing with our prime minister he listens to your problems and he tries to solve them
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है
0: yes.
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं आप जहां जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी
0: yeah.
1: है ना
0: एंड सी हु एक्सपेक्टेड दैट 3.5 करोड़ पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स इन इंडिया राइट द इंप्लीमेंटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड 15 लाख हैव ऑलरेडी गॉट इट टुडे दे विल बी इट विल बी कंफर्मड फॉर देम थ्रू द प्रेस ऑफ दैट बटन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड देन ओवर द ईयर मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job. But it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: Yeah,
0: the aim of our Prime Minister is to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं हमारा रिजल्ट आता है एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
0: सो इन फैक्ट द पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ अस यू नो There are deaf and dumb people also over here and there's one person
1: Translate
0: Yeah, him. He's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything and he's saying, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा
0: yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है ज्यादा नहीं और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे बातचीत खत्म ना हो नहीं
0: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड दे आर ऑल इन अटेंशन एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद अदर डिग्निटरीज ही विल बी टेकिंग अ सीट ऑन द डेस एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज that will be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार जोरदार तालियां हो जाए
2: देवियों और सज्जनों तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल
3: माय भारत वॉलंटियर्स आप सभी का
0: The Prime Minister has arrived. He has taken his seat on the desk. Flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें एक बार जोरदार तालियां
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने
2: यह सम्मान का माध्यम है यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे
0: And now the welcome remarks
2: जोरदार तालियां हो जाएं।
0: by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदला जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय केंद्रीय मंत्रीगण राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाई एवं बहनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे प्रो लेबर थे उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए चार महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को एक साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉइज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1,00,000 करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1,00,000 करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15,00,000 एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2,400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
0: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
2: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
5: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
6: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
5: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को यह राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
7: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर मिले।
8: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
5: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
0: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that was a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
1: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
0: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries have got the benefits.
2: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
2: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: डाइस पर
6: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में

बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है।

哎。प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या

से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ
नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है।

0: ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खोलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dream is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज

0: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।
1: ग्राम जगत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रामू का नमस्कार
2: और सबों को कमली का भी नमस्कार। नमस्कार रामू भाई।
1: नमस्कार नमस्कार और हार्दिक स्वागत कमली बहन। और सब बताइए क्या हाल समाचार है?
2: सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन देखिए मौसम की बेरुखी, बादल तो छाते हैं लेकिन बारिश का होना थोड़ा बाकी सा है।
1: बिल्कुल जी। ये हमेशा लग रहा है कि भाई अब बारिश हो जाएगी, अब बारिश हो जाएगी और लोग उसका इंतजार भी कर रहे हैं।
2: मानसून भी तो आने वाला है। हाँ लेकिन ये हो रहा है। और रामू भाई आज एक विशेष दिवस है
1: जी।
2: आज जो है यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है।
1: अच्छा।
2: तो ये प्रत्येक साल 19 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है कि संघर्ष में जो संबंधित व्यक्ति जिन यौन हिंसा से जिन पर प्रभाव पड़ता है, इस यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है
1: जी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को एक ऐसे शब्द के रूप में परिभाषित करता है कमली बहन, जो कह सकते हैं कि जैसे बलात्कार हो गया या फिर जबरन विवाह हो गया या फिर इसी तरह की गंभीरता वाली जो यौन हिंसा के किसी भी अन्य रूप को संदर्भित करता है जो महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों के खिलाफ की जाती है या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी संघर्ष से जुड़ी होती है।
2: जी जी।
1: है कि नहीं
2: रामू भाई? देखिए हिंसा तो हमेशा से बुरी होती है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन हिंसा का सबसे विभत्स रूप होता है यौन हिंसा
1: जी।
2: तो यो यौन हिंसा से पीड़ित व्यक्ति की आत्मा तक घायल हो जाती है।
1: निश्चित
2: तो
1: रूप
2: निश्चित
1: से।
2: तौर पे हमें इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने का की बहुत ही आवश्यकता है।
1: इसलिए तो इस दिन का निर्माण न केवल जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया कमली बहन, बल्कि यौन हिंसा के पीड़ितों को सम्मानित करने और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी किया गया जिन्होंने इन अपराधों के खिलाफ खड़े होकर दुनिया भर में अपनी जान भी गंवाई है।
2: जी।
1: है कि नहीं? और इसके साथ ही बच्चों पर यौन हिंसा के प्रभाव जो होते हैं ना, वो बहुत ही विनाशकारी और दीर्घकालिक होते हैं कमली बहन।
2: जी जी। अक्सर क्या होता है ना, बच्चे तो सबसे मासूम होते हैं
1: जी।
2: और उन्हें हमारे सहयोग से दुनिया देखने की एक अवसर होता है। लेकिन जब बच्चों के साथ यौन हिंसा जैसे अपराध होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अपनी छवि समाज के प्रति बहुत ही गलत बना लेते हैं और फिर वैसे बच्चे जो है बड़े होकर हिंसा के लिए दायी होते हैं।
1: बिल्कुल। और इसलिए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा को प्रमुख चिंता का विषय भी माना गया है।
2: जी जी।
1: और इससे निपटने के लिए ठोस कार्य योजनाएं जो है उसका आह्वान भी किया गया है। और यह प्रस्ताव जो है कमली बहन, वो अपराधियों की सूची बनाने, जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने और सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में बच्चों की सुरक्षा के लिए वैश्विक जो प्रयास है उसको सुदृढ़ करने के लिए एक प्रेरक शक्ति के भी रूप में काम करता है।
2: जी,
1: है कि नहीं?
2: जी बिल्कुल। और ये एक लगातार एक बनी रहने वाली चिंता यह भी है कि भय और सांस्कृतिक कलंक मिलकर संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के पीड़ितों के विशाल बहुमत को एक ऐसी हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए आगे आने से रोकता है।
1: निश्चित रूप से। और यह दिवस जो है वो उन लाखों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने का अवसर है कमली बहन, जो युद्ध, सशस्त्र संघर्ष और हिंसक परिस्थितियों में यौन हिंसा का शिकार बने हैं। साथ ही यह दिन दुनिया को यह संदेश भी देता है कि यौन हिंसा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है और इसके खिलाफ जो है वो सामूहिक प्रयास आवश्यक है।
2: जी,
1: है कि नहीं?
2: जी, जी। और यौन हिंसा देखिए रामू भाई, केवल शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाता है बल्कि यह पीड़ितों के मानसिक स्वास्थ्य को, आत्मसम्मान को और उनके सामाजिक जीवन को भी
1: गहरा प्रभाव छोड़ता है। बिल्कुल।
2: उन पर गहरा प्रभावित करते हैं और कई बार पीड़ितों को समाज में बहुत ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उपेक्षा का सामना करना पड़ता है और जिससे कि उनका दर्द और भी बढ़ जाता है।
1: जी।
2: तो जरूरत है कि हम पीड़ितों के साथ खड़े हों और ऐसी किसी भी हिंसा के लिए हम सभ्य समाज में हमारे कोई भी जगह कभी नहीं होनी चाहिए
1: जी।
2: तो रामू भाई, हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले कुछ संदेशों को सुनते हैं।
1: जी।
3: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under Rs. 1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
4: Nexa.
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
6: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
5: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
7: सुनो ना।
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
7: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: The future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
4: Nexa.
1: जी
2: जी,
1: जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत में। और जैसा कि संध्या वेला है कमली बहन, तो एक बढ़िया सा देवी गीत से हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल।

0: जी, अब मैं रामू भाई, हम अपने श्रोताओं को कुछ मौसम से संबंधित जानकारियां दे दें।
1: जी
0: तो अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
1: जी
0: अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है।
1: जी
0: इस अवधि में 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का अनुमान है। लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबोर श्री, सवर्णा सब एक, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा एवं VPT 52-4 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़े हुई गोबर के खाद का व्यवहार करें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर तथा लंबाई सुविधा अनुसार रखें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें और बीज को गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें।
1: जी।
0: जितने क्षेत्र में धान का रोपण करना हो उसके दशांश हिस्से में बीज गिराएं। बीज की को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें।
1: जी।
0: और खरीफ मक्का की बुआई आसमान के साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर

0: की दर से व्यवहार करें।
1: जी, और कुछ अब पशुपालक भाइयों के लिए भी सलाह है कमली बहन।
0: हाँ हाँ,
1: कि गलघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले करीब 2 घंटा तक पानी में उसको फुला लेना है और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा जो है वो दाना मिला करके देना
0: जी
1: है।
0: बहुत ही जरूरी है। और हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे पशु जो है ज्यादा दूध वगैरह देंगे और अच्छा फायदा होगा। और हमारे जो पशु हैं वो मतलब अक्सर वो खाना जो खाते हैं, चारा खाते हैं, उसके लिए भी हम लोग कई तरह की चारा उपजाते हैं, या हरी खाद के लिए भी हम लोग देखिए कि ढेंचा वगैरह की खेती करते हैं। तो जो ये हरी खाद के लिए ढेंचा की खेती होती है, इसमें कई कैसे इसकी उपज करें, कैसे इसकी बुआई करें, इससे संबंधित जानकारी आज हम अपने श्रोता भाई बहनों को देते हैं। तो एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता के जरिए हम देते हैं, आइए सबको सुनवाते हैं।
2: किसान भाइयों, हम अपने दैनिक कार्यक्रम खेती गृहस्थी में भागलपुर जिले के कृषि पदाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह साहब को आमंत्रित किए हैं और इनसे आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे हरी खाद के संबंध में। तो सबसे पहले हम चंद्रशेखर साहब, जिला कृषि पदाधिकारी भागलपुर को हम नमस्कार बोलते हैं।
3: नमस्कार
2: सर, आप पहले बताइए कि हरी खाद क्या है।
3: हरी खाद जैविक खाद के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवयव। हरी खाद के उपयोग का मुख्य उद्देश्य वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करना एवं मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना है। सघन कृषि पद्धति तथा असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोगों के कारण दिन प्रतिदिन मिट्टी की उर्वरता में ह्रास हो रहा है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के व्यवहार से पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके कारण पौधे मिट्टी में उपस्थित सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। हरी खाद न केवल सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, वरना मिट्टी में हार्मोन तथा विटामिन की मात्रा को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ खरपतवार की वृद्धि को भी रोकता है। दलहनी तथा गैर दलहनी फसलों को उनके वानस्पतिक वृद्धि काल में उपयुक्त समय पर मृदा उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जुताई करके मिट्टी में अपघटन के लिए दबाना ही हरी खाद कहलाता है।
2: सर, आपने तो किसानों को बता दिया कि हरी खाद क्या है। सर, हम आपसे और हम आकाशवाणी के माध्यम से हमारे किसान भाई भी जानना चाहेंगे कि हरी खाद से उन्हें क्या लाभ है और इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
3: हरी खाद की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि कम समय में ज़्यादा बायोमास मृदा को प्राप्त होता है। दूसरा लाभ यह है कि रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते हुए खर्च को हम लोग रासायनिक उर्वरक पर जो अपव्यय करते हैं उसको कम कर सकते हैं। लगभग 2000 रुपया प्रति हेक्टेयर कम किया जा सकता है। तीसरा लाभ इससे है कि खरपतवारों को हरी खाद पनपने नहीं देता है, कीट व्याधियों के लिए भी ये काफ़ी संवेदनशील नहीं है। यानी हरी खाद का यदि हम खेत में प्रयोग करते हैं तो कीट व्याधि का प्रकोप कम होगा। फिर इससे लाभ यह है कि ऊसर भूमि में 4-5 साल तक लगातार यदि इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, हरी खाद लगाते हैं, मुख्य रूप से ढैंचा की फसल का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो उसमें 4-5 साल के बाद हम लोग खेती आसानी से कर सकते हैं। और लाभ है कि मिट्टी में उपस्थित लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए खाद्य पदार्थ के रूप में हरी खाद का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं।
2: सर, आपके माध्यम से हमारे किसान भाई यह भी जानना चाहेंगे कि हरी खाद लगाने का सबसे उचित समय क्या है, कब और कैसे लगाया जाता है।
3: सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हरी खाद के लिए मुख्य फसलें हमारी जो हैं ढैंचा, सनई, लोबिया, ग्वार, उड़द और मूंग, ये मुख्य फसलें हैं हरी खाद की। और इनका लगाने का समय जो है, जैसे ढैंचा जो है अप्रैल से लेकर के जुलाई तक लगाएंगे, सनई अप्रैल से जुलाई तक, लोबिया भी अप्रैल से जुलाई तक लगाते हैं, ग्वार भी अप्रैल से जुलाई तक, और उड़द जून से जुलाई तक, और मूंग को भी जून से जुलाई तक लगाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से ध्यान देने की बात है कि ढांचा के लिए सरकार के द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाया गया है, और सरकार ने मुख्य रूप से बिहार में 8 किलोग्राम एक एकड़ प्रत्यक्षण के लिए सभी किसानों को प्रत्यक्षण के लिए 90% अनुदान पे इस वर्ष उपलब्ध कराया गया है। विगत वर्षों में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर ढांचा उपलब्ध कराया गया, और मूंग का भी कार्यक्रम जिसमें 80% अनुदान पर किसानों को बीज उपलब्ध कराया गया है।
2: अच्छा सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो हुआ, लेकिन जो मुख्य फसल हमारी रवि और खरीफ फसल जो है, जिसमें गेहूँ और चना और फसल लगाई जाती है, क्या इस इन सब फसलों में भी ये हरी खाद का उपयोग किया जा सकता है?
3: हरी खाद के रूप में जैसे हम लोग खरीफ में ढैंचा का प्रयोग करते हैं, तो इसको पूरे साल तक इसका प्रभाव रहता है, और उसके अलावे आप ढैंचा या किसी भी क्रॉप का हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव जो है तुरंत समाप्त हो जाता है, और वो सड़ने में थोड़ा समय लगता है, और उससे पूरे साल तक मैंने काफ़ी पौधों को जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और आवश्यक पोषक तत्व जैसे विटामिन और हार्मोन हैं वो पूरे साल तक प्राप्त होते रहते हैं, और रबी में भी उपलब्ध होते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको हरी खाद के रूप में जैसे कि हम लोग मूंग का और दलहनी फसलों का जो प्रयोग करते हैं, तो मुख्य दलहनी फसलें हम लोग जो रबी में लगाते हैं उनसे एक तरह से हरी खाद हमको आसानी से मिलते रहती है, इसलिए कि जो दलहनी फसलों की जड़ें होती हैं उसमें गांठें होती हैं, नोडल्स होते हैं, जो कि वायुमंडल से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, तो इसलिए उसमें सड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप उसमें हरी खाद के रूप में जो दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं उसी को मान लिया जाए कि हरी खाद के रूप में उसको हम प्रयोग कर रहे हैं, और उनसे वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त होते रहता है।
2: यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि रबी और खरीफ फसल में भी इस हरी खाद का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं।
3: हाँ।
2: अच्छा सर, एक चीज़ और हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार की कौन कौन सी नई योजनाएं हैं जिसका लाभ वो उठा सकें।
3: वर्तमान समय में बिहार सरकार के द्वारा खरीफ मौसम में किसानों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम हम लोगों का हरी खाद से संबंधित रहा, जो किसानों को मूंग 80% अनुदान पर और ढांचा 90% अनुदान पर वितरण किया गया, और दूसरा हमारा कार्यक्रम है श्री विधि धान प्रत्यक्षण का कार्यक्रम, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में लिया गया है, और किसान को 3,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से अनुदान हम लोग उपलब्ध कराते हैं, एक प्रत्यक्षण पर व्यय करना है एक एकड़ के लिए। दूसरा कार्यक्रम संकर धान की खेती से संबंधित प्रत्यक्षण का कार्यक्रम है, इसमें एक कृषक को 1200 रुपये तक अनुदान हम लोग देते हैं, 200 रुपया प्रति केजी के दर से अनुदान दिया जाता है, और इसमें 6 किलोग्राम बीज संकर धान का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, और यह बहुत ही संकर धान का प्रत्यक्षण का कार्यक्रम जो है बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है, और जितने भी कार्यक्रम बिहार में चलाए गए अभी तक मैं कहूँगा कि श्री विधि के बाद जो है संकर धान प्रत्यक्षण का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और इसके अलावा खेती में कृषि यांत्रिकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा पैडी ट्रांसप्लांटर से धान का प्रत्यक्षण का कार्यक्रम, फिर उसके बाद पैडी

0: ड्रम सीडर से धान के प्रत्यक्षण का कार्यक्रम और सीधी बुआई। आपको जलवायु परिवर्तन हो रहा है बहुत तेजी से, आप लोग देख रहे होंगे हमारे किसान भाई कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है समय पर खेती कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम उसमें मुख्य है जीरो टीलेज से या सीड ड्रिल से धान की सीधी बुआई का कार्यक्रम।
1: जी बहुत ही अच्छी काम की जानकारियां हम लोगों को मिली दामू भाई, और निश्चित तौर पे हमारे श्रोता भाई बहनों को इनसे बहुत ही लाभ पहुंचेगा। अगले कार्यक्रम में फिर से ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दें सबों को, कमली का नमस्कार।
2: सबको रामू का भी नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित हुआ क्षेत्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। जनजातीय क्षेत्रों के 20,000 घरों में बिजली पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। रामगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया नए प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। सखी मंडलों के बीच बांटे 38 लाख के चेक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR को लेकर की समीक्षा बैठक। आज से चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। सोशल मीडिया की फर्जी खबरों पर रहेगी सख्त नजर। और देवघर एम्स की बड़ी उपलब्धि, संस्थान के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में मिला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम से पहले कुछ युवाओं से बातचीत भी की। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उद्योग और युवाओं के बीच एक मजबूत सेतु है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
0: इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में भी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बोकारो में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां बतौर मुख्य अतिथि सांसद ढुल्लू महतो शामिल हुए। केंद्रीय आवासन शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज रांची में शहरी विकास और विद्युत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार भी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों के छूटे हुए 20,000 घरों में बिजली पहुंचाना केंद्र की प्राथमिकता है।
2: कंज्यूमर्स को लेकर के एक स्मार्ट मीटर और साथ में जो गवर्नमेंट के हमारे जितने कनेक्शन है, पहले चरण में प्रीपेड मीटर, ये करने का ये विचार है, इसको जल्दी पूरा किया जाएगा। प्रदेश के जो लॉसेज, जो पावर डिपार्टमेंट सामान्यतः AT&C लॉसेज एक बड़ा विषय रहता है हर प्रदेश में, तो यहाँ भी कैसे बिजली की चोरी को रोका जाए, इन सब बातों पर भी विचार किया गया है।
0: वहीं राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप केंद्रीय योजनाओं में शिथिलता बरतने और DVC के साथ मिलकर बिजली वितरण सुधारने का आग्रह किया।
3: हमने माननीय मंत्री से एक ही आग्रह किया कि पैन इंडिया के लेवल पर बनी योजनाएं भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, यहां के स्थानीय निवासी की जरूरतों को देखते हुए कोई एक टीम आकर एक ज्वाइंट सर्वे करके इस स्टेट की जरूरतें और प्रायोरिटीज को अगर तय करके लेकर जाती हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड को भी हम लोग प्रगति के पथ पर बेहतर ले जा पाएंगे।
0: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रामगढ़ प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सखी मंडलों और महिला समूहों के बीच 38 लाख रुपए के चेक वितरित किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री ने JSLPS की महिलाओं के कार्यों की सराहना की और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी को रेखांकित किया।
4: मैं JSLPS की बहनों को भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों के प्रयास से एक योजनाएं सरकार की सफल हो रही है। आप लोग बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़े, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन था कि हमारी बहनें स्वावलंबी हो और सरकार की जो अलग अलग योजनाएं चल रही है उसको जोड़ करके इस तरह के काम किए जाए जिससे आपकी आजीविका भी सुनिश्चित हो।
0: भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न देने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में माले नेताओं ने कहा कि उनके दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में 30 जून से शुरू हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज

0: गिरफ्तार किए। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। इस कांड का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एटीएस के द्वारा किया जाएगा।
1: एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स की यह रैंकिंग ओपन एरेक्स के वैश्विक शोध आंकड़ों पर आधारित है, जिसने चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान का गौरव बढ़ाया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कल राज्य भर में आंशिक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है, जबकि पलामू और गढ़वा में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित हुआ क्षेत्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। जनजातीय क्षेत्रों के 20,000 घरों में बिजली पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। रामगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया नए प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। सखी मंडलों के बीच बांटे 38 लाख के चेक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR को लेकर की समीक्षा बैठक। आज से चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। सोशल मीडिया की फर्जी खबरों पर रहेगी सख्त नजर। और देवघर एम्स की बड़ी उपलब्धि। संस्थान के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में मिला स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम। कार्यक्रम में योगाचार्य उमाकांत चौधरी से सुनिए योग से रोगों के उपचार विषय पर वार्ता।
3: योग द्वारा बीमारियों का उपचार। आज हम कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज, जो जीवन शैली से जुड़े हुए बीमारियां हैं, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। नियमित योगा अभ्यास, सही खानपान एवं संतुलित जीवन शैली अपनाकर हम स्वस्थ एवं प्रसन्नचित रह सकते हैं। यह एक आदर्श स्थिति है जिसका पालन करना असंभव तो नहीं, परंतु कठिन अवश्य है, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य की मानसिकता बदलती रहती है। वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन शैली बिल्कुल बदल गया है। प्रायः सभी समय अभाव का बहाना बनाकर शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। भोजन के नाम पर फास्ट फूड, पानी के स्थान पर कोल्ड ड्रिंक, टीवी देखते हुए रात्रि जागरण, प्रातः देर से जगने के चलते योगाभ्यास, व्यायाम और शारीरिक श्रम का बिल्कुल अभाव, कार्य बोझ वर्कलोड के चलते जीवन में खेल का अभाव तथा आपसी हेलमेल और हास्य परिहास का लोभ होना हमें बीमार और लाचार बना दिया है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण, मानसिक तनाव, गलत खानपान और गलत जीवन शैली अनेक घातक बीमारियों को जन्म दे रही है, जिसमें प्रमुख हैं मानसिक तनाव, स्ट्रेस, मधुमेह, डायबिटीज, मोटापा, ओबेसिटी, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, जोड़ों का दर्द, गठिया या अर्थराइटिस। ये सभी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। ऊपर वर्णित बीमारियों तथा अन्य बीमारियों को संतुलित जीवन शैली एवं नियमित योगाभ्यास से ठीक किया जा सकता है। पहला, तनाव, स्ट्रेस। मानसिक तनाव मन की वह स्थिति है जब मनुष्य किसी दबाव में आकर यथा लोभ, भय, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध के आवेग में ग्रसित होकर घुटन भरी जिंदगी जीता है। अतः मानसिक तनाव को समस्त बीमारियों का जड़ माना गया है। कारण, वैचारिक प्रदूषण, वातावरण का प्रदूषण, गलत खानपान, अनियमित समय पर भोजन करना, तंबाकू, धूम्रपान, मद्यपान, दूषित कार्यों में संलग्न रहकर रात्रि जागरण तथा शरीर के बाहरी एवं भीतरी सफाई का अभाव। तनाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं

अनिद्रा, मानसिक विक्षिप्तता, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हृदय रोग, सरदर्द, माइग्रेन, मोटापा, डायबिटीज आदि। योगा अभ्यास से उपचार। आसन, शवासन, बालासन, शिथिलीकरण एवं योग निद्रा का नियमित अभ्यास कर हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। शवासन, पीठ के बल लेटकर शरीर के प्रत्येक अंग को शांत और शिथिल कर तनाव रहित करना तथा मन से सहज स्वाभाविक श्वास प्रश्वास का अवलोकन करना। ध्यान रहे, शरीर स्थिर रहे और मन अन्य दिशाओं में न भटक जाए। इस क्रिया को जब दीर्घ काल तक करते हैं तो यही योग निद्रा हो जाता है। लाभ, शरीर ऊर्जावान एवं मन शांत एवं प्रसन्नचित हो जाता है। समय।

मिलती है, साथ ही रक्त में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति को मधुमेह कहते हैं। मधुमेह के कारण शरीर में पाचन तंत्र से जुड़ा अंग पैंक्रियास द्वारा स्रावित इंसुलिन की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी आ जाना, मानसिक तनाव, श्रम का अभाव, अनुवांशिक यानी पैतृक शर्करा युक्त खाद्य का अधिक सेवन, ये सभी कारण है मधुमेह। इससे प्रभावित अंग, इन मरीजों के आंख, गुर्दे, स्नायु, मस्तिष्क एवं हृदय के क्षतिग्रस्त होने से इसमें गंभीर जटिल एवं घातक रोग का खतरा बढ़ जाता है। शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है। मधुमेह के प्रकार, टाइप 1 इंसुलिन आश्रित मधुमेह, टाइप 2 इंसुलिन अनाश्रित मधुमेह। योगा अभ्यास से उपचार, इंसुलिन का स्राव पैंक्रियास के टेल पोर्शन से होता है। जब पैंक्रियास निष्क्रिय हो जाता है तभी इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है। अतः योगा अभ्यास में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है ताकि पैंक्रियास रीएक्टिवेटेड हो सके। आसन, पैंक्रियास को एक्टिवेट करने वाले आसन, शरीर को सक्रिय कर इन आसनों का अभ्यास नियमित रूप से प्रातः एवं सायंकाल करना चाहिए। सूर्य नमस्कार, मंडूकासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, धनुरासन, मयूरासन, हलासन, सर्वांगासन एवं मत्स्यासन, इन सभी आसन में पैंक्रियास एक्टिवेटेड होता है। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जायी, नाड़ी शोधन, भ्रामरी एवं उद्गीत। यौगिक क्रियाएं, लघु शंख प्रक्षालन, कुंजल एवं नेति। ध्यान, तनाव चूंकि मधुमेह का मुख्य कारण है अतः तनाव रहित होने के लिए ध्यान आवश्यक है। स्थिर आसन में बैठकर या शवासन में लेटकर अपने सहज स्वाभाविक श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना। योग निद्रा, योगाभ्यास के बाद एवं रात्रि में सोने से पूर्व इसका अभ्यास करें। भ्रमण प्राणायाम, वॉकिंग करते हुए प्राणायाम करना, प्रातः एवं सायंकाल दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हुए टहलना, इसके साथ साथ पथ्यापथ का ध्यान रखना अनिवार्य है। उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना जो सुपाच्य एवं पौष्टिक हो तथा शर्करायुक्त एवं तले मसालेदार पदार्थ से परहेज करना। तीसरी बीमारी मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा शरीर की वह स्थिति है जब अत्यधिक वसा फैट शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। शरीर भार सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स BMI जब 30 केजी मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो मोटापा एक बीमारी का रूप ले लेती है। लक्षण, शरीर का बेडोल हो जाना, तोंद निकल जाना, कूल्हे, बांह एवं जंघा पर अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाना। कारण, अत्यधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ का सेवन, शारीरिक गतिविधियों का अभाव, पूरे दिन एक ही स्थान पर बैठकर काम करना, मानसिक तनाव, असंतुलित एवं असंयमित जीवन शैली। आनुवांशिक, हेरिडिटरी यानी पैतृक, पिता को है तो उसके पुत्र की होने में इसकी संभावना बढ़ जाती है। थायरॉयडिज्म, थायरॉयड ग्लैंड से कम मात्रा में जब थायरॉक्सिन निकलता है तो शरीर स्थूल होता चला जाता है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। योग द्वारा उपचार, योगाभ्यास, शारीरिक श्रम, सही खानपान एवं संतुलित जीवन शैली अपनाकर मोटापे से छुटकारा पाया जा सकता है। आसन, योगिक जॉगिंग, तीव्र गति से सूर्य नमस्कार, पवन मुक्त आसन, पश्चिमोत्तान आसन, हलासन, सर्वांगासन, मंडूकासन, त्रिकोण आसन, इन सभी आसनों को करते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने आयु का, यदि कम आयु के हैं तो तेजी से करना चाहिए इन आसनों को, और यदि मध्य या बुजुर्ग लोग हैं तो धीमी गति से करना चाहिए। प्राणायाम, प्रातः एवं सायंकाल नियमित रूप से वस्त्रिका, कपालभाति, उज्जायी, शीतली एवं शीतकारी तथा नाड़ी शोधन प्राणायाम। यौगिक क्रिया, लघु शंख प्रक्षालन, न्योली, कुंजल तथा नेति। परहेज, पथ्यापथ का ध्यान रखना, चर्बी युक्त एवं तली खाद्य का निषेध, दिन में सोना एवं आलस्य का त्याग। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम यदि योगाभ्यास

0: करेंगे तो शरीर स्वस्थ और मजबूत स्वाभाविक रूप से बन जाएगा। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, दिल का दौरा तथा हृदयाघात, हार्ट अटैक, रक्त दबाव, ब्लड प्रेशर सामान्य 80/120 से अधिक या कम होने की स्थिति से दिल की बीमारी प्रारंभ होती है, जो सही उपचार के अभाव में हृदयाघात, हार्ट अटैक, पक्षाघात, पैरालिसिस एवं ब्रेन हैमरेज तक पहुंच सकती है। दुनिया भर में पुरुषों एवं महिलाओं में मौत के मुख्य कारणों में दिल का दौरा प्रमुख है। लक्षण: अचानक छाती में दर्द, सांस की तकलीफ, मिचली, उल्टी, घबराहट और अत्यधिक पसीना आना। कारण: पूर्व हृदय रोग, बड़ी आयु, तंबाकू, धूम्रपान, मद्यपान का अधिक सेवन, मधुमेह, मोटापा, गुर्दे किडनी की पुरानी बीमारी, ड्रग्स का सेवन, अनिद्रा, चिंताग्रस्त रहना, अवसाद एवं अनियमित जीवन शैली, इन कारणों से ये बीमारी होती है। योगाभ्यास से उपचार: मानसिक तनाव को दूर करने हेतु शवासन, शिथिलीकरण एवं योग निद्रा का अभ्यास करें। आसन: सूक्ष्म व्यायाम, ज्वाइंट मूवमेंट, पवन मुक्त आसन, बाल आसन, शशांक आसन आदि हल्के आसनों का ही अभ्यास करें। प्राणायाम: नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जायी, शीतली, शीतकारी एवं भ्रामरी। ध्यान: ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हुए आनापान या प्रेक्षा ध्यान, यानी शवासन में लेटकर योग निद्रा का अभ्यास करना। इस अभ्यास को करते समय अपने श्वास प्रश्वास पे जो सहज स्वाभाविक है उस पे ध्यान रखना चाहिए। परहेज: अत्यधिक नमक, फास्ट एवं जंक फूड, तली और भुनी पदार्थ, तंबाकू, धूम्रपान एवं अल्कोहल से बचना चाहिए। सेवन क्या करें? हल्की सुपाच्य एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ, विश्रांति एवं गहरी नींद का सेवन करें। पांचवी बीमारी: कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कब्ज पाचन तंत्र की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति का मल बहुत कड़ा हो जाता है तथा मल त्याग में कठिनाई होती है। पेट में शुष्क मल जब जमा हो जाता है तो शरीर में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए कब्ज को समस्त बीमारियों का जड़ माना जाता है। कब्ज के कारण: कम रेशायुक्त भोजन का सेवन, दूसरा मैदा युक्त तली पदार्थ यथा समोसा, बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड एवं जंक फूड तथा कोल्ड ड्रिंक का सेवन, तीसरा गरिष्ठ पदार्थ का अत्यधिक सेवन, चौथा चाय, कॉफी एवं अल्कोहल का अधिक सेवन, पांचवा तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, धूम्रपान का सेवन, छठा अनियमित समय से भोजन करना, सातवा पानी का कम पीना, आठवा शारीरिक श्रम का अभाव, नौवा मानसिक तनाव, दुख, भय, परेशानी तथा चिंताग्रस्त रहना। योगोपचार: प्रातः काल गर्म पानी में नींबू का रस एवं शुद्ध शहद मिलाकर लें, तत्पश्चात योगाभ्यास प्रारंभ करें। आसन: ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटि चक्रासन, कागासन, पवन मुक्तासन, हलासन, सर्वांगासन एवं सूर्य नमस्कार। मुद्रा: अश्वनी मुद्रा एवं तड़ागी मुद्रा का अभ्यास, बंद, उड्डयन बंद एवं महाबंध का अभ्यास, यौगिक क्रिया लघु शंख प्रक्षालन, वस्ति एवं कुंजल। पथ्य: रेशायुक्त खाद्य पदार्थ यथा साबुत अनाज, ताजा फल एवं हरी सब्जी का अधिक सेवन करना एवं पर्याप्त मात्रा में जल पीना। निषेध: मैदा से बनी पदार्थ, जंक एवं फास्ट फूड, शुष्क उपवास, मिर्च मसाला, तंबाकू, धूम्रपान और रात्रि जागरण। इससे
1: अभी हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप योगाचार्य उमाकांत चौधरी से सुन रहे थे योग से रोगों के उपचार विषय पर वार्ता। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पटना से दिल्ली का सफर 4 घंटे 41 मिनट में होगा पूरा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, स्टार्टअप और उद्योगों के विकास के लिए बिहार टेक पोर्टल का होगा निर्माण। अगले 5 साल में देश का औद्योगिक हब बनेगा बिहार। और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में 10 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की दी स्वीकृति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार की पॉलिसी और फैसलों ने पूरे देश में लगातार नए रोजगार के मौके बनाए हैं। श्री मोदी नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से देश विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है।
1: साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही है, जो निर्णय लिए गए, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर जाता है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना की मदद से अब तक करीब 70 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं।
1: हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज छपरा से आनंद विहार के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे बिहार सहित पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में बिहार को बुलेट ट्रेन परियोजना का भी लाभ मिलेगा।
2: बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी। आज साथियों, जो दिल्ली

0: कि ये गाड़ी रवाना हो रही है, ये बहुत लंबे समय से मांग थी। इससे छपरा से बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, ये सारे के सारे एक सूत्र में बन जाएंगे और आने वाले समय में पूरे छपरा के निवासियों को बहुत बड़ी एक सुविधा रहेगी।
1: इधर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने जिले के मढ़ौड़ा स्थित लोकोमोटिव प्लांट में तैयार 51वें रेल इंजन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर अफ्रीकी देश गिनी के लिए रवाना किया। मढ़ौड़ा से रवाना किया गया यह इंजन पहले मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा, वहां से समुद्री मार्ग के जरिए इसे गिनी भेजा जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत बना यह इंजन भारी माल ढुलाई के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना से बिहार को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, नवाचार, तकनीक और उद्यमिता के माध्यम से नए भारत की मजबूत नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाकर बिहार विकसित राज्य के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टियर 2 टियर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही बिहार टेक पोर्टल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को अगले 5 वर्षों में उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। पटना के राजीव नगर स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापना में आने वाली बाधाओं को तेजी से दूर कर रही है तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान की प्रभावी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की 157 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहे। पटना स्मार्ट सिटी के कुल 9 प्रोजेक्ट्स को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पटना के चर्चित परियोजनाओं में मीठापुर में 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में तैयार कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा पटना में गिग वर्कर्स के लिए 2 एसी लाउंज का भी उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने दीघा से सभ्यता द्वार तक विकसित रिवर फ्रंट परियोजना का भी उद्घाटन किया। यह जिगजैग पार्क बनाया गया है। नगर विकास विभाग की यह परियोजनाएं पटना शहर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में 10 अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक एवं विभागीय कार्रवाई को स्वीकृति दी है। श्री जायसवाल ने कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। पटना सिटी की भूमि सुधार उप समाहर्ता अभिलाषा सिन्हा पर दाखिल खारिज अपील वाद के निष्पादन के बदले 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर निलंबन की अनुशंसा की गई है। वहीं हाजीपुर के तत्कालीन अंचलाधिकारी मुकुल कुमार झा, किशनगंज सदर के अंचलाधिकारी राहुल कुमार तथा पश्चिम चंपारण के बगहा एक की अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव सहित कई अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने कार्य में लापरवाही के आरोप में शिवहर जिले के तरियानी थानाध्यक्ष विनय कुमार को निलंबित कर दिया है। इधर सुपौल के पुलिस अधीक्षक ने प्रतापगंज थाना के मालखाना से प्रतिबंधित कप सिरप को अवैध रूप से बेचने के आरोप में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं चौकीदार राहुल कुमार सहित 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने लगभग एक दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी MVR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग दोगुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क भी महंगे होंगे। नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष MVR में स्वतः 5% की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्टर पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। दरभंगा में 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष बस सेवा चलाई जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिल्ली मोड़ बस पड़ाव और दरभंगा रेलवे स्टेशन से विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक 10 बसों का परिचालन किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बसें सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक निर्धारित मार्गों पर चलेंगी, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना के बामेती सभागार में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम उत्पादक किसान, उद्योग विशेषज्ञ और आम विक्रेता मौजूद रहे। महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां किसानों और आम प्रेमियों को अलग अलग किस्मों के आमों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि बिहार में आम की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है।
1: राज्य के पूर्वी भाग 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर उष्ण लहर होने चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग ने बांका, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, सहरसा और समस्तीपुर सहित अन्य जिलों में अगले 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित राज्य की एकीकृत मध्य विद्यालय डहरक ने स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर 64वां स्थान प्राप्त किया है। देश भर के लगभग 14,75,000 विद्यालयों का मूल्यांकन किया गया था, जिनमें से 191 विद्यालयों का चयन राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की।

0: केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पटना से दिल्ली का सफर 4 घंटे 41 मिनट में होगा पूरा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, स्टार्टअप्स और उद्योगों के विकास के लिए बिहार टेक पोर्टल का होगा निर्माण, अगले 5 साल में देश का औद्योगिक हब बनेगा बिहार। और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल 10 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की दी स्वीकृति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार, कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: और इस गीत के बाद
5: ऑल इंडिया रेडियो।

This is All India Radio, the news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है सारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह।
4: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मरौड़ा लोकोमोटिव फैक्ट्री का निरीक्षण किया तथा अफ्रीका देश के गिनी के लिए निर्यात होने वाले 91 रेल इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर छपरा आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस, मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस तथा दोहरी घाट और हरिहार में के विस्तृत परिचालन का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में रेल बुनियादी ढांचा विस्तार और सोनपुर रेल मंडल के विकास को लेकर भी चर्चा हुई।
5: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी। बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
4: संभावित बाढ़ और नदी कटाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने मकेर के हौजलपुर तथा तरैया क्षेत्र के कटाव निरोधी और तटबंध निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने संबंधित एजेंसियों को सभी कार्य 30 जून तक पूरा करने तथा गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिए। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां पर कल तक रोक लगा दी है। यह आदेश सरकारी निजी संविदा प्राप्त

0: विद्यालयों, कोचिंग संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होगा। प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। बीते दिन सोनपुर प्रखंड के डुमरी बुजुर्ग स्थित कालीरात्रि मंदिर परिसर में जिला स्तरीय जैविक खेती कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती, वॉर्म कंपोस्ट, जीवामृत तथा प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग की जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत जिला में इन दिनों ऑनलाइन नशा मुक्ति शपथ अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न प्रखंड के लोगों ने नशा से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खेल विज्ञान, कला संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा और वीरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि रखने वाले 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1: और अब प्रस्तुत है सिवान जिले की हलचल। सिवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिनों सिवान जिले के पतरुखी प्रखंड स्थित पपौर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने लाभार्थियों के बीच योजनाओं का लाभ वितरित किया तथा सहयोग सह जन कल्याण शिविर का उद्घाटन कर लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।
3: मुख्यमंत्री का आदेश है किसी विभाग का कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, यदि उसने 30 दिन में आप बिहार की जनता का काम नहीं किया तो 31वें दिन उसको निलंबित करने का काम हमारी सरकार करती है। साथ
2: सिवान नगर परिषद क्षेत्र में यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए ई रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। अगले 6 माह के लिए इस रोक को बढ़ाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। इधर जिले में व्यापारिक संगठनों ने सामूहिक निर्णय लेते हुए प्रत्येक रविवार को बाजार बंद रखने का फैसला किया है। इस व्यवस्था से व्यापारियों और कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिलने के साथ साथ शहर में यातायात का दबाव भी कम होने की उम्मीद है। दूसरी ओर महिला बाल विकास निगम की ओर से जिले में विभिन्न प्रखंडों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला परिवहन विकास और पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग सहित यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बीच पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने तथा लाभार्थियों तक सुविधाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की संख्या तथा मध्याह्न भोजन योजना की नियमित निगरानी की जा रही है।
1: अभी आप सुन रहे थे सारण और सिवान जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह, जबकि सिवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकाश कुमार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं वैशाखी प्रसाद। आइए कार्यक्रम में इनसे सुनते हैं विद्यापति का लिखा ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार थी वैशाखी प्रसाद। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओं, और कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनाते हैं फिल्म शोला और सबनम से सबीर कुमार और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं अनजान ने, संगीत है बप्पी लहरी का।

0: The future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TLC apply.
1: Nexa.
2: श्रोताओं, फिर से रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और अब आइए आपको सुनाते हैं अनुराधा श्रीराम, सुजाता, सोनू निगम और ए आर रहमान की आवाज़ में फिल्म ताल का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है ए आर रहमान का।

0: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: दोस्तों, रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म विजयपथ का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं जमीर काजमी ने, संगीत है अनु मलिक का।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और चलिए मैं आपको अब सुनाता हूँ तौसीफ अख्तर की आवाज में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है जतिन ललित का।

दोस्तों, रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनाते हैं फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के का ये गाना, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। इस गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है संजीव दर्शन का।

अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित

0: पाठ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: रिमेन्स अ मैटर ऑफ राइट, नॉट एज अ स्ट्रगल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट्स है।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का

0: सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: दिस इज द कंट्री।
3: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और इंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झारसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है।

0: बैडमिंटन में कल चीन में मकाऊ ओपन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला पार्क गायून से होगा। अब खबरें तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। PMVBRY के नफाज के तहत तरगीबात तकसीम किया जाना एक अहम संग मील की हैसियत रखता है, जो रोजगार से मुंसलिक हुकूमत की अहम तरगीबाती स्कीम है, जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने में तेजी लाना, रोजगार फराहम करने में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में समाजी सिक्योरिटी को वसत देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी में उन ममालिक में मौके फराहम होंगे जो हुनरमंदी को फरोग देंगे, इख्तरा में इजाफा करेंगे और क्वालिटी के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़कर कायदाना रोल अदा करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की में इजाफे, इख्तरा और कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: जनाब मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद पहली मर्तबा रोजगार हासिल करने वालों को बाएख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान एक पुल का रोल अदा करना है। उन्होंने कहा कि उमंगें, हुनरमंदी और भारतीय नौजवानों की सलाहियत विकसित भारत की राह मुतय्यन करती हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्कीम के अब तक तकरीबन 70 लाख नौकरियां कायम की जा चुकी हैं।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
0: स्कीम के तहत पहली बार रोजगार हासिल करने वाले 15,000 रुपए तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो उन्हें अफरादी कुवत की हैसियत से तस्लीम किए जाने में अहम मदद फराहम करती है। रोजगार के इजाफी मौके पैदा करने वाले आजिर 3,000 रुपए फी माह तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो फी इजाफी रोजगार पाने वाले के हिसाब से दी जाती है, जिससे रोजगार के पायदार मौके की हौसला अफजाई होती है। इससे कबल तरगीबात की तकसीम से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने विज्ञान भवन में कुछ नौजवानों से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी हुकूमत ने वर्करों की बहबूद और मफादात की खातिर 4 अहम लेबर कोड नाफिज किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा में झारगोड़ा के लखनपुर में कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल से मुतालिक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 25,000 करोड़ रुपए है। कोयले की वजारत ने बताया कि यह प्रोजेक्ट मुल्क की पहली कमर्शियल सतह की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की सहूलत की तारीखी संग मील की निशानदेही करता है। ये प्रोजेक्ट भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड का एक मुश्तरका इदारा है। ये देसी साख्ता कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन योमिया अमोनियम नाइट्रेट की पैदावार करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपनी आबाई रियासत के दो रोजा दौरे पर उड़ीसा पहुंची। खराब मौसमियाती सूरतहाल के पेश नजर मयूरभंज जिले की डंडबोस हवाई पट्टी पर उनकी तयशुदा परवास की लैंडिंग मनसूख कर दी गई, जिसकी वजह से पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से राय रंगपुर सड़क के जरिए सफर किया। अपनी आमद के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने एम्स भुवनेश्वर सेटेलाइट सेंटर और राय रंगपुर में एक मेगा सब डिविजनल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस पहल

0: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रदर्शन।
1: श्रोता मित्रों नमस्कार, उपस्थित हैं हम शतदल के इस अंक के साथ। श्रोताओं, साहित्य की प्रासंगिकता शाश्वत है क्योंकि ये मनुष्य को समाज, संस्कृति और स्वयं से जोड़ता है। तकनीकी और भागदौड़ भरे आधुनिक युग में जब मानवीय संवेदनाएं कम हो रही हैं, साहित्य हमें संवेदनशील, सहृदय और नैतिक बनाता है। ये हमें जीवन के कठिन सवालों का सामना करने और मानसिक शांति प्राप्त करने की शक्ति देता है। साहित्य हमें दूसरों के

0: सुख दुख को समझने और परोपकार की भावना सिखाता है। ये कठोर होते इंसान में करुणा और प्रेम जगाता है। आधुनिक जीवन में तनाव, अवसाद और अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के लिए साहित्य एक मरहम का काम करता है। ये विचारों को स्पष्टता और जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। साहित्य किसी भी समाज की संस्कृति, रीति रिवाजों और इतिहास का जीवित दस्तावेज होता है। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। साहित्यिक रचनाएं पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति, विश्लेषण क्षमता और भाषा कौशल का विकास होता है। श्रोताओं, साहित्य समाज का दर्पण होने के साथ साथ मार्गदर्शक भी है। जब तक मनुष्य और समाज रहेंगे, तब तक साहित्य और उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो श्रोताओं, शतदल में अब आइए सुनते हैं पूर्व प्रसारित वार्ता। आज साहित्य क्यों धूमिल है, वार्ताकार हैं निपेंद्र प्रसाद वर्मा।
1: साहित्य समाज का दर्पण तो कहलाता ही है। यह जनता की चित्त वृत्ति का संचित भंडार और उसकी आशाओं तथा आकांक्षाओं का कोष एवं उसके आगे आगे चलने वाली मशाल भी है। इसलिए साहित्य का सीधा संबंध समाज से है और समाज की रक्षा और उसके विकास के लिए साहित्य को धूमिल होने से बचाने की जरूरत है। साहित्य रहेगा तो समाज और देश बचेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें चाहे मेट दो, हमारे नगर, प्रांत, देश, राष्ट्र सबका नाश कर दो, पर हम साहित्य का संजीवनी सुरा पीकर फिर से जी उठेंगे, अमर हो जाएंगे। उसकी स्वर्गीय प्रभाव पाकर हमारा देश, हमारा राष्ट्र फिर से जगमगा उठेगा, क्योंकि साहित्य ही हमारी संस्कृति, हमारा प्राण और हमारापन है। साहित्य रूपी मारतंड के अभाव में समाज एवं देश में घोर अंधकार छा जाएगा। कहा भी गया है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। साहित्य से ही समाज और राष्ट्र को जीवन शक्ति मिलती है। साहित्य की प्रभा से ही समाज और देश जाज्वल्य होता है। इसके बिना हमारा अस्तित्व शेष नहीं रह जाता है। साहित्य बचेगा तो हम नए समाज और राष्ट्र का निर्माण फिर से कर लेंगे। यह मनुष्य में ऐसी चेतना का संचार करता है जिसके फलस्वरूप वह लोक मंगल की भव्य भावना से पूरित हो जनता के सुख दुख और आशाओं आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए उद्यमशील हो उठता है और साहित्य की सुवर्ण वीणा से लोक मंगल की झंकार सुनाई पड़ने लगती है। इससे निकलने वाले स्वर में विश्व शांति का संदेश और विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करने की क्षमता होती है। सबका हित, सबका साथ, इसका महत्व उद्देश्य होता है। एतदर्थ आज ऐसे साहित्य को धूमिल होने की बात बेहद चिंता का विषय है। हमें इस बात की पड़ताल करने की जरूरत है कि आज साहित्य क्यों धूमिल हो रहा है। साहित्य के धूमिल होने के कई कारण हैं। आज का समाज जिस प्रकार के धर्म, संप्रदाय, अंधविश्वास और राजनीति की विशाल भुजाओं में बंधा हुआ है, उससे साहित्याकाश के मेघाच्छन्न होने की पर्याप्त स्वाभाविकता है। इन क्षेत्रों में आई मूल्यहीनता का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा है और यहाँ भी मूल्यों का क्षरण हुआ है, जिसके फलस्वरूप आज के साहित्य में वह तेज नहीं दिखता है जो आज से कई सौ वर्ष पूर्व के साहित्य में दिखता है। वैदिक साहित्य, उपनिषद साहित्य, पुराण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा अन्य धार्मिक साहित्य जो मनुष्य को परम पद पर सुप्रतिष्ठित करने का काम करता है, वे सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा देने वाला कहकर ठुकरा दिए गए हैं। हिंदी के कई नामचीन साहित्यकार आज पाठ्यक्रम से बाहर कर दिए गए हैं और विचारधारा विशेष के साहित्य को पाठ्य ग्रंथों में स्थान दे दिया गया है, जिसकी वजह से राष्ट्रवादी और लोक मंगलकारी सोच में कमी आई है। सहसंबंधों, विश्व मानव कल्याण और सामाजिक समरसता बनाए रखने वाले प्रेरक साहित्य आज बहुत कम लिखे और पढ़े जा रहे हैं। फलस्वरूप आतंकवाद, अलगाववाद और अपसंस्कृति को बढ़ावा मिला है तथा राष्ट्रवाद की भावनात्मक सोच में गिरावट आई है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुब्रमण्यम भारती, नजरुल इस्लाम, रामधारी सिंह दिनकर और गोपाल सिंह नेपाली की राष्ट्रवादी कविताओं को आज उदंड बच्चा हिकारत भरी दृष्टि से देखता है। काश वह इन साहित्य मनीषियों की कविताओं को पढ़ा होता तो अलगाववाद और आतंकवाद तथा राष्ट्रद्रोहियों के समर्थन

0: समर्थन में देश के भीतर राष्ट्र विरोधी नारे नहीं लगाता, क्योंकि साहित्य समाज में राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रतिरोध में खड़ा होने वाला एकमात्र विकल्प है। देश के हर परिवर्तन और विकास के मूल में साहित्य की अहम भूमिका होती है। वैसी स्थिति में साहित्य का धूमिल होना राष्ट्र के विकास, परिवर्तन और समरसता में व्यवधान होगा। साहित्य आज इसलिए भी धूमिल हो रहा है कि अब न तो वह समाज का दर्पण रहा, न आत्मा व्यक्ति, न सामाजिक यथार्थ की अभिव्यंजना और न जीवन की आलोचना। नैतिक शिक्षा, मूल्य व्यवस्था, मनुष्यता का भाव, विश्व मानव प्रेम का भाव आज साहित्य से तिरोहित होता जा रहा है। आज साहित्य के धूमिल होने का एक महत्वपूर्ण कारण संचार क्रांति का नकारात्मक प्रयोग भी माना जा सकता है। साहित्य जहाँ मनुष्य की संवेदनाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, वहीं संचार माध्यम केवल घटनाओं का कोरा प्रदर्शन है। इसकी यांत्रिक अभिव्यक्ति में भाव और संवेदना की शून्यता होती है। ऐसी अवस्था में साहित्य आज अपनी बुनियादी मान्यताओं से कटता जा रहा है। अब तो वीडियो डिस्क, वीडियो कैसेट, रिकॉर्डिंग, MF रेडियो, माइक्रोफिल्म, कैप्सूल, वीडियो टेक्स्ट आदि के प्रयोग से संप्रेषण और अभिव्यक्ति का अर्थ ही बदल गया है। मानवीय मूल्य, भाव संवेदना और सांस्कृतिक पतन में इन माध्यमों की असमानांतर भूमिका रही है। इनके प्रयोग से साहित्य की संप्रेषणीयता और साधारणीकरण की प्रक्रिया पर गहरा आघात हुआ है। फलस्वरूप साहित्य और पाठक के बीच तदाकार नहीं हो पाता है, जिससे अच्छा से अच्छा साहित्य भी अपने प्रभावपुंज से जनता के हृदय को आलोकित नहीं कर पा रहा है। आज साहित्य के प्रति जनता की रुचि में ह्रास होता जा रहा है। साहित्य के धूमिल होने में बाजारवाद की भूमिका भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। साहित्य भी आज अन्य उत्पाद की तरह बाजार की वस्तु बना दिया गया है। बाजार की मांग के अनुरूप सस्ती किस्म के साहित्य के प्रकाशन से समाज और देश में विकृतियां बढ़ी हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज उत्कृष्ट कोटि का साहित्य नहीं लिखा जा रहा है, ऐसे साहित्य छप भी रहे हैं, किंतु अन्य उत्पाद की तरह इसका मूल्य बाजार तय करता है। फलस्वरूप ऐसा साहित्य आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है, और जब साहित्य आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा, तब कैसे साहित्य में सामाजिक विकृतियों के प्रतिरोध में खड़ा होने का उत्साह भर सकेगा। 21वीं सदी में यह विकृति बढ़ी है। एक स्वस्थ समाज और सुंदर राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरत है जनता की मनोवृत्ति को बदलने की, और यह सत्कार्य साहित्य के अतिरिक्त अन्य माध्यमों के द्वारा संभव नहीं है। साहित्य के आलोक में ही कोई समाज और देश आगे बढ़ा है। समाज और राष्ट्र को स्वस्थ बनाए रखने की औषधि है हमारा साहित्य। इसलिए ऐसे साहित्य को धूमिल होने से बचाने की जरूरत है। इसके लिए साहित्य को धूमिल करने वाले तत्वों की पड़ताल कर उन पर विराम लगाने की आवश्यकता है।
1: अभी हम नृपेंद्र प्रसाद वर्मा से पूर्व प्रसारित वार्ता आज साहित्य क्यों धूमिल है सुन रहे थे। शतदल में अब आइए सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित कहानी, फर्ज की जीत। रचनाकार हैं उमाकांत भारती।
2: शुरू शुरू में फर्ज के इम्तिहान के सभी प्रश्न उमंग और उसकी पत्नी चांदनी को बहुत आसान लगे थे। बाबूजी की सारी जरूरतें ए से जेड तक खुशी और उमंग से वे दोनों पूरा करते रहे। यह शुरू के 2-3 महीने की बात थी। रामरस बाबू विगत 1 साल से स्वयं करवट भी नहीं बदल पाते, अपने हाथों से वे खा पी भी नहीं सकते थे। सुबह उन्हें बैठाकर मुंह धुलवाना, चौनपरास खिलाना, दूध पिलाना, हॉर्लिक्स पिलाना, नाश्ता कराना, दोपहर में सुसुम पानी से स्नान कराना, कपड़े बदलना, भोजन कराना, सुबह शाम दोनों आंखों में दवा डालना, 8 बार दवा खिलाना, शाम को नाश्ता कराना, रात में दूध रोटी और सब्जी खिलाना, इसके अलावे 15-20 बार सुसुम पानी पिलाना और कई बार मलमूत्र त्याग करवाना। 70 वर्षीय उमंग को 3-4 महीने के बाद ही परिचय कठिन लगने लगे। निश्चिंतता से खाने पीने और आराम करने के लिए उसे मोहलत नहीं मिल पाती थी। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती जब वह भोजन कर रहा होता तो पानी पानी की आवाज़ सुनकर वह बिना खाए ही उठ पड़ता, फिर भोजन की इच्छा मर जाती। कभी रामरस बाबू पुकारने लगते उमंग बेटा, पानी गला सूख रहा है। तब बिना शौच किए उसे बाहर निकलना पड़ता है। यह सब देख सुनकर चांदनी को लगने लगा कि ऐसे में उमंग बीमार पड़ जाएंगे। तब वह कदाचित दोनों की देखभाल नहीं कर पाएगी। गठिया की बीमारी नहीं होती तो शायद कोई सगा भी तो नहीं है जो संकट मोचन बनकर मदद करे। इन पहलुओं पर विचार करने के बाद उसने उमंग से कहा, भोजन करने वक्त या नेचुरल कॉल के दौरान आप बीच में नहीं उठा करें, मैं बाबूजी का काम कर दूंगी। क्या मलमूत्र का त्याग भी करवा सकोगी? उमंग का स्वर चुनौती भरा था। हाँ, क्यों नहीं, बच्चा बूढ़ा एक समान, फर्ज के आगे किंतु परंतु आड़े नहीं आने दूंगी, लाज कैसी? उसका जवाब सुनकर उस दिन उमंग का उमंग और भी बढ़ गया। उस दिन से दोनों परस्पर सहयोग के आधार पर रामरस बाबू की सेवा करने लगे। दिन किसी तरह बीत जाता लेकिन रात मुश्किल भरी होती। रामरस बाबू कब सोते थे, सोते भी थे या नहीं, यह प्रश्न अकारण नहीं उठा, क्योंकि 25-30 मिनट के अंतराल पर रामरस बाबू की आवाज गूंजने लगती, पानी पानी पिलाओ, गला सूख रहा है। उनकी आवाज सने सने ऊंची होने लगी। बिना रुके उमंग की नींद टूट जाती, तब वह फायरमैन बन जाया करता था। रात के नीरव सन्नाटे में अक्सर रामरस बाबू की आवाज उनके घर की सीमा तोड़कर पड़ोसियों के घरों में दस्तक देने लगती। उन लोगों को भी नींद रात में कई बार उचट जाती। तब वे लोग कहने लगते, बूढ़ू पानी के लिए छछनते रहते हैं, जो बेटा बूढ़े बाप को मुफ्त का जल नहीं देता हो वह भोजन क्या देता होगा। इलाज और मलमूत्र साफ करने की बात तो बहुत दूर, सेवा नहीं कर पाते तो मार क्यों नहीं देते, कोई दूसरा कहता, मारने की क्या जरूरत, भूख प्यास से तड़प कर मर ही जाएंगे, अब हमें ही कोई कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, आने दो सोसाइटी के सेक्रेटरी को। पड़ोसियों की बातें तीक्ष्ण कांटे बनकर उमंग के दिल में चुभ गए। दर्द की टीस से उसका अंतर्मन पीड़ा से कराहने लगा। सोसाइटी वालों की धमकी से चांदनी घबरा गई, न जाने क्या करने वाले हैं ये लोग। चांदनी ने कहा, निष्ठावान सेवाधारी का यह कैसा कीर्तिगान। कहते कहते उमंग की आंखों से आंसू झड़ने लगे। तब चांदनी ने उसके बिखरते मनोबल को संजीवनी देने के ख्याल से कहा, कदाचित एक मर्द परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंसकर घुटने टेक दे, लेकिन एक सपूत कदापि नहीं। श्रवण कुमार की कथा क्या आप भूल गए? एक बात और, हम लोग जानते हैं कि हम गलत नहीं हैं, इसलिए हम किसी से डरने वाले नहीं। चांदनी की बातों ने उसके दिल पर उगे फफोले पर न सिर्फ मरहम लगाने का काम किया बल्कि उसकी आत्मशक्ति को पुनर्जीवित कर दिया। सोसाइटी वालों ने फिर कोई उत्पात नहीं मचाया, लेकिन कोल्ड वार के बुलबुले फटते रहे। दोनों ने अपने को निर्लिप्त कर दिया, उन लोगों की बातों को अनसुना करने लगे। 3-4 महीने बाद रामरस बाबू की हालत थोड़ी और बिगड़ गई। अब उन्हें दिन रात का ज्ञान कभी कभी नहीं रहने लगा। खाने पीने के मामले में भी उनकी स्मृति घर वालों की परेशानी और बढ़ा दी। नाश्ता भोजन और पानी पीने के बाद वे भूल जाते, थोड़ी देर में ही वे पुनः मांगने लगते। आए दिन वे कभी कभी आधी रात को भोजन और चाय मांगते। रामरस बाबू की स्मरण शक्ति छिन्न होने लगी है यह जानते हुए भी दोनों उनकी आवाज पर दौड़ पड़ते, क्योंकि थोड़ी भी देर होने पर वे जोर जोर से आवाज लगाने लगते। इसका कुप्रभाव दोनों के तन मन पर पड़ने लगा, कमजोरी, अनिद्रा, बदहजमी, सरदर्द, तनाव। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चांदनी ने उमंग से कहा, हमें अपना इलाज तुरंत करवाना चाहिए, अन्यथा हम लोग और सेवा करने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन बाबूजी अकेले कैसे रहेंगे, मर गए तो? नहीं नहीं, इन्हें एक दो घंटे भी अकेले छोड़ना सही नहीं होगा। उमंग ने अस्पताल जाने से साफ मना कर दिया। तब चांदनी ने स्त्री धर्म के तेवर दिखलाए, कहा, फर्ज की पुकार क्या बाबूजी के लिए सिर्फ, पत्नी के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी नहीं? प्राण रक्षा करना मानव का धर्म है, फर्ज भी है यह, तो फर्ज के निर्वहन में भेदभाव क्यों? उमंग को जवाब नहीं सूझा। समझ में नहीं आता क्या करूं। आप इन्हें वृद्धा आश्रम में भर्ती कर दीजिए, इससे हमारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने पितृ ऋण का बोझ मैं दूसरे पर नहीं डाल सकता, यह मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं, दोबारा ऐसा कहना भी नहीं। उमंग थोड़ा नाराज हो गया था। तब हमें एक सेवक या सेविका इनकी सेवा के लिए रखना चाहिए, कुछ अधिक मांग करे तो भी। चांदनी की यह बात उमंग को पसंद आ गई, लेकिन आजकल कर्मठ सेवक दुर्लभ जीव जैसे हो गए हैं। खोजने पर कदाचित भगवान मिल भी जाए, लेकिन कर्तव्य परायण सेवक हरगिज नहीं। फिर भी मैं ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। उस दिन से उमंग सेवक की खोज में पिल पड़ा, लेकिन पड़ोसियों को इतना सबर कहां। वे लोग हल्ला गुल्ला करते हुए उमंग के घर पहुंच गए। तुम लोग बुढ़ू को खाना पीना क्यों नहीं देते हो? सोसाइटी के सेक्रेटरी कल्याण सिंह ने आंख तरेर कर उमंग से पूछा। यह आरोप गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो उमंग। अगर इन्हें खाना पीना मिल रहा होता तो पानी और भोजन की रट क्यों लगाते रहते हैं? इस बार जवाब चांदनी ने दिया। आप सठिया गए हैं क्या? बिना खाए पिए ये जिंदा कैसे हैं? चांदनी को खुनस निकालने का मौका मिल गया था। पड़ोसियों की तीखी फफ्तियां सुन सुनकर उसकी कान पक गए थे। आधा पेट खिलाने पिलाने से तुरंत जान नहीं निकलती, लेकिन धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाता है आदमी। तुम्हारी भी यही साजिश है। तुम दोनों गुनाहगार हो, तुम दंड के पात्र हो, सेक्रेटरी ने गरज कर कहा। रामरस बाबू का काम और वाक्य अंतर बिल्कुल दुरुस्त था। दोनों की झूठी बदनामी सुनकर उन्होंने कड़क कर कहा, मेरा बेटा स्वर्ण कुमार सा है, तुम्हारी तरह कपूत नहीं, तो आप चिल्लाते क्यों रहते हैं? पगला गए हैं क्या? कहते हुए वह उमंग की तरफ मुखातिब होकर आदेशात्मक स्वर में बोला, इन्हें या तो वृद्धा आश्रम भेज दो या इनके मुंह पर टेप साट दो, अन्यथा हम इन्हें पागल खाने भेजवा देंगे ताकि हम लोग रात में चैन से सो सकें। उसकी धमकी सुनकर उमंग ने कड़े स्वर में कहा, कपूत ही अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धा आश्रम की राह दिखलाते हैं, इन्हीं में से एक आप भी हैं। आप धन बल और जन से संपन्न हैं, फिर आपके पिताजी वहां क्यों हैं? आपका मुंह देखना भी पाप है, चले जाइए यहां से, अन्यथा। सेक्रेटरी का मुंह काला पड़ गया। मोहल्ले वाले उसे छोड़कर धीरे धीरे खिसक गए।
1: अभी हम उमाकांत भारती से पूर्व प्रसारित कहानी फर्ज की जीत सुन रहे थे। श्रोताओं, अब आइए चलते हैं शतदल के आखिरी सोपान यानी काव्य पाठ की तरफ। इसमें हम डॉक्टर राम पूजन सिंह से पूर्व प्रसारित काव्य पाठ सुनेंगे।
3: मेरी पहली कविता है बेटियां। जीवन उपवन का वसंत है बेटियां, आनंद का उद्गम अनंत है बेटियां, हृदय का ऊर्जस्वित उल्लास है बेटियां, सचमुच अंधकार में प्रकाश हैं बेटियां, खुशबू बन घर में महकती हैं बेटियां, चुलबुल बुलबुल सी चहकती हैं बेटियां, जिंदगी की रूह सी लहकती हैं बेटियां, प्रीति की पावन अग्नि सी दहकती हैं बेटियां, मधुमय सुधा घटा सी बरसती हैं बेटियां, सेवा सुश्रम समर्पण से हरसती हैं बेटियां, प्रबल प्राण बल से सब प्राण लरसती हैं बेटियां, वीणा सी बजती कभी सिंहनी सी गरजती बेटियां, हमारा सच्चा दुलार प्यार मांगती हैं बेटियां, फूलने फलने बढ़ने चढ़ने का द्वार मांगती हैं बेटियां।

माता पिता सबके लिए दुआ उपहार मांगती हैं बेटियां, हो जीवन का सदा श्रृंगार यही मांगती हैं बेटियां, कभी ना हो उन पर अत्याचार यही मांगती हैं बेटियां। मेरी दूसरी कविता एक गीत है, रहना प्रतीक्षमान तुम मैं आ रहा हूँ, ज्योति का संदेश स्वर्णिम ला रहा हूँ, महाकाल का चक्र पल पल गतिशील है, परिवर्तन का नर्तन आवर्तन अनावील है, हो रहा अंधकार सघन गगन में भय घटा, क्षणित पर्यावरण विगलित वसुधा की छटा, सहरा पर बद्री बन मैं देखो छा रहा हूँ, रहना प्रतीक्षमान तुम मैं आ रहा हूँ, आतंक अनीति प्रदूषण का कोलाहल रो रहे, असुर बल हुमच रहा विपदा छाई घन घो रहे, समता स्वतंत्रता बंधुत्व का सुमंच पर शोर है, पर अभी स्वतंत्र कमजोर कुतंत्र पुरजोर है, मैं ममता मानवता के सुगीत गा रहा हूँ, रहना प्रतीक्षमान तुम मैं आ रहा हूँ, इस अंधेरी सुरंग के अंत में मुंतजिर प्रकाश है, अवसाद यंत्रणा की कोख में पल रहा उल्लास है, इस मनहूस पतझर का अंत होगा यही वसंत होगा, आसुरी हंता तृष्णा से मरमाहत मनुष्य फिर संत होगा, सृजन की संवेदना सुधा मैं बंधु ला रहा हूँ, रहना प्रतीक्षमान तुम मैं आ रहा हूँ, कली मन की खिलेगी धरा हरी नीले व्योम से मिलेगी, सामूहिक संकल्प से हृदय काया कल्प से जड़ता ही लेगी, पीड़ित मानवता का उत्थान होगा नव मंगल विहान होगा, पतन उत्कर्ष का सोपान होगा ध्वंस से नव निर्माण होगा, संजीवनी की खातिर मैं गंतव्य पर जा रहा हूँ, रहना प्रतीक्षमान तुम मैं आ रहा हूँ, ज्योति का संदेश स्वर्णिम ला रहा हूँ। मेरी तीसरी रचना एक गजल है, हो कर लहालोट कभी नाचता उसका

टूट कभी फक्र जिस पर था आपको, ऐसा वह प्यारा पहिया था। पागल रहता था खुशी से, इतराता था बहुत खुद पर। सांवरिया था आपका अजीज, बौराया बाबरिया था। रो पड़ता था हृदय आपका, बिछोड़ कर उससे पल भर। आपकी खुशी का सबब था, जीने का नटखट जरिया था। आंसुओं का जल पात्र ला दे कंधों पर मुरीद आपका। श्रद्धा बिहवल करता था अभिषेक, समर्पित कांवरिया था। सींचता हुआ वसुधा को आपकी चेतना के सूखी सूखी। प्यारा कल कल छल छल बहता प्रणय का दरिया था। देखिए न किस कदर बेचैन वह तिश्नगी से छटपटा था। क्यों मर रहा मैं जिसने आपकी आंखों से पिया था। रौनक चेहरे पर आपके आती थी जिसके रोशन दीदार से। रो रहा वह आज बिलख कर, ऐसा उसने क्या किया था। बाती

वह प्यारा चिराग डालिए स्नेह उसमें आपने, डालिए स्नेह उसने आप में। एक माँ को पा लिया था होकर लालोट कभी नाचता।

0: एक और गजल, बहुत हंसती हैं आंखें आपकी, एक करम कीजिए गिरा कर पलकें, मन तबस्सुम से मोह लीजिए, खड़ी हवा पास आपके, हसरत ये खुशबू लिए उसकी झोली में नाजनीन, सुरभि डाल दीजिए, यह को क्या हो गया है चांद को, क्यों छुप गया वो, तसल्ली देकर उसे हौसला आप जाई कीजिए, तपिश ए मोहब्बत होती मधुर मधुर मादक बहुत, पकता उसमें फले इष्ट आप उसी में सीजिए, फलक पर प्यार के छाती घटा आबे हयात की, खिलता गुलशन मन का आप उसमें भीजिए, ठहरता कहाँ वक्त पूजन पल दो पल के लिए भी, टलना मिलन का है हादसा फिर हाथ न मीजिए, बहुत हंसती हैं आंखें आपकी, एक करम कीजिए गिरा कर पलकें, मन तबस्सुम से मोह लीजिए।
1: अभी हम डॉक्टर राम पूजन सिंह से पूर्व प्रसारित काव्य पाठ सुन रहे थे। श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे अनुमति लेने का। आज के शतदल के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, स्वर सहयोग था सुप्रभात राय का। अपने सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराएं। इसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा के निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 812001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रदर्शन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं 12 साल विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के की श्रृंखला की 18वीं कड़ी का प्रसारण।
3: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
4: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ

0: कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
1: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
0: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में पीएम डिवाइन, तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
1: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
0: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था, थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
1: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और उन सब प्रोजेक्ट्स से

0: ये कोशिश की जा रही है, जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है। जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर। साथ ही साथ गाइड्स, और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो हैं, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएँ और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है, और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं, और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहाँ पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे, और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सबका इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड व्हेन दे डू दैट दे आल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी।
1: थैंक यू सो मच सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। इंटरव्यूअर इज शिशिर सिन्हा, जर्नलिस्ट।
3: नमस्कार। मोदी गवर्नमेंट इज कम्प्लीटिंग 12 ईयर्स। ड्यूरिंग दोज 12 ईयर्स वी हैव सीन वेरियस अप्स एंड डाउन इन द इंडियन इकोनॉमी। We have seen challenges like COVID, we have seen challenges like Russia-Ukraine war, and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco, and it's a pleasure to have you on the show.
4: Thank you very much.
3: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
4: So I think a lot of positives happened. And if I were to say, what are the way I would put sort of contextualize what has happened? You've already given the environment. There were challenges like COVID.

श्रोताओं, भी आपने सुना 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के की श्रृंखला की 18वें कड़ी का प्रसारण। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आप श्रोताओं के पत्रों और ईमेलों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी। श्रोताओं, सबसे पहले वो गीत जिसके लिए हमें फरमाइश आई है वो है फिल्म आपकी कसम से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत के लिए फरमाइश किया है अकोट से नितिन पाटिल, नलिन पाटिल, अजिंक्य पाटिल और आदित्य पाटिल ने। वहीं मस्कन चंपानगर से अशोक कुमार, रॉकेट, बॉबी, व्यास दास, संजय दास, उर्मिला देवी ने। साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश की है नवाबपुरा मुरादाबाद से बबली अनजान, सूरज राजा, टिल्लू, गीता कश्यप, रणवीर कश्यप ने। साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश की है श्रोताओं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम ने। साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ भाटपारा देतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पे सुनते हैं फिल्म आपकी कसम से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना।

जी हाँ श्रोताओं, इस खूबसूरत से गाने के बाद कार्यक्रम में अब वो लेते हैं हम वो अगला गीत जिसकी फरमाइश आई है आप लोगों की तरफ से। वो गीत है फिल्म सीमा से मन्ना डे की आवाज़ में। दोस्तों, इस गीत की फरमाइश की है धरारा मुंगेर से मिनी नमन और आस्था ने, साथ ही साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से मुकेश कुमार, मुंगेर से कुमार रामदेव पटेल ने, वहीं दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुण वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सारिक पुजारी ने इस गीत की फरमाइश की है। दोस्तों, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिमा कौर, बिहार कॉलोनी महासमुंद से वसीउल्ला फ़कीर, डब्लूउल्ला फ़कीर और परवीन आसमक फ़कीर ने, साथ ही साथ बुलंदशहर से बदरुवली अंसारी, फर्जुवली अंसारी, फर्जुवली अंसारी ने, साथ ही साथ श्रोताओं इस गीत की फरमाइश की है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी ने, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और उस्मा नाज अंसारी ने, साथ ही साथ चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम कौर और डॉक्टर अदीबा ने, सारिमपुर बक्सर से इस गीत की फरमाइश की है राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पे सुनते हैं सीमा फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, और इस गाने के बाद चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। और वो अगला गाना जिसकी फरमाइश आई है आप लोगों की ओर से, वो है गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से। दोस्तों इस गाने की फरमाइश की है चांदपुर गोगरी जिला खगड़िया से जानकी प्रसाद मंडल, रीता देवी, रेखा, पूनम, नंदू मंडल और घर के सभी सदस्यों ने। वहीं उत्तम नगर नई दिल्ली से गौरव मदन, अनिल मानसी और कविता अरोड़ा ने। साथ ही साथ भीखनपुर भट्टा रोड भागलपुर से इस गाने की फरमाइश की है गणेश पासवान और सुधा पासवान ने। वहीं इस गाने की फरमाइश आई है मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी की ओर से। साथ ही साथ ममलखा लैलक से इस गाने की फरमाइश की है विनोद यादव ने। सहरजा से राधे विद्यार्थी ने और भागलपुर से डॉक्टर हेमंत कुमार ने। तो आइए श्रोताओं, इन सभी की फरमाइश पे आपको सुनाते हैं गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म साहिब बीवी और गुलाम का ये गाना।

जी हाँ श्रोताओं, और इस गाने के बाद चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर, जिसकी फरमाइश आप लोगों ने की है, और वो गाना है किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सागर से। दोस्तों, इस गाने की फरमाइश की है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने साथ ही साथ इस गाने की फरमाइश की है मुजाहिदपुर पूरब टोला भागलपुर से, मोहम्मद खालिद अंसारी, मोहम्मद ताहिर अंसारी कादिर, मास्टर सर्वर अफ्ताब आलम, मेराज आलम, एम के नाज ने साथ ही साथ हुसैनाबाद भागलपुर से इस गीत की फरमाइश की है नूरुल हुदा, जीनत अमान, सोनी अमान, छोटी अमान, शरद बाबू, बिट्टू, राजेश मोहम्मद, मुनव्वर हुसैन और अनश बाबू ने साथ ही साथ दोस्तों इस गाने की फरमाइश की है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां ने, बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सालेहा खातून और गुड़िया खातून ने साथ ही साथ चंद्रनगर राजकोट से इस गाने की फरमाइश की है कौशल्या जोशी, सोनाली जोशी, सुरेश जोशी, कबीरनगर डोंडी से देवशंकर बेलदार, प्रभा बेलदार ने साथ ही साथ इस गाने की फरमाइश की है चमन पार्क दिल्ली से, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा ने, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी ने। तो आइए श्रोताओं, इन सभी की फरमाइश पे सुनते हैं फिल्म सागर से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आप श्रोताओं के पत्रों और ईमेलों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
2: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining-affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency NTA today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, which is +91 78 27 98 02 87. India has slammed Pakistan at the United Nations as it is accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its owner monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday, after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report.
3: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
2: In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semi-final of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.
4: मीडियम वेव 205.76 पीटर यानी 1400